सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

एक भक्त की भगवान से यही प्रार्थना रहती है, हे प्रभु मुझे सही राह दिखाना, हर कदम पर मेरा साथ निभाना, मेरे मन में सदा सच्चाई रखना और बुराई से बचाना, दुखों में धैर्य, सुख में विनम्रता देना, हर हाल में मुस्कुराने की शक्ति देना, मेरे कर्म सदा अच्छे बने ऐसी बुद्धि और समझ देना, तेरी कृपा बनी रहे हमेशा, बस इतना सा आशीर्वाद देना।

शम्स हम है।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने जो भक्ति रचनाएं सुनी उनमें आवाजें थीं लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, नूरजहां और साथियों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेद स्वरों में ये देश गान।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय है सत्य। आलेख है डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का और वाचन है श्री यतीन्द्र चतुर्वेदी का।
1: सत्य मानवीय पक्ष का सर्वाधिक दृढ़ आधार है। इसकी महिमा प्रत्येक धर्म ग्रंथ में स्थापित है तथा व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिए इसका प्रयोग भी अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। जीवन में सत्य की स्वीकृति ही सत्प्रेम, सत्प्रयास, सहयोग, सद्भावना आदि की दृढ़ भित्ति बनी। इसके सद्गुणों के कारण नारायण स्वरूप में इसकी पूजा, उपासना और व्रत आदि का क्रम प्रारंभ हो गया। लेकिन इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान पाए हैं हम, जब तक उसे पहचान कर जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे हम, तब तक बाह्य आडंबर ही रहेगा। किसी के आदेश के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जंगल में गाय खोजने जाए जिसकी न तो कोई रुचि इस कार्य में हो और न गाय को पहचानता हो, तब परिणाम क्या रहेगा? निश्चित रूप से निरर्थक प्रयास से थक हार कर वापस लौट आएगा। पहले तो रुचि पूर्वक वह गाय को खोजने का प्रयास नहीं करेगा और यदि गाय सामने मिल भी गई

0: तो पहचान न होने के कारण उसे पकड़ नहीं सकेगा। यही स्थिति सत्य की है। आपको सत्य से कितना प्रेम है, चिंतन, भोग, आचरण में सत्य का कितना नैतिक ध्यान रखा जाता है। यदि नैष्ठिक सत्य प्रयोग के आप पक्षधर नहीं हैं, तब पारलौकिक सत्य कैसे मिलेगा? नारायण की प्राप्ति कैसे होगी? सच तो यह है कि आपके नैष्ठिक सत्प्रयास से सत्य का चतुर्मुखी आलोक आपको असीम तृप्ति, अखंड शांति और अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करेगा। कौरव पांडवों के शिक्षण प्रशिक्षण का क्रम आचार्य द्रोण के गुरुकुल में प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन का पाठ था सत्यम वद। दूसरे दिन पाठ की पुनरावृत्ति पर सभी ने सुना दिया सत्यम वद। लेकिन ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर मौन रहे। तीसरे दिन भी यही क्रम चलने पर आचार्य द्रोण ने सस्नेह जिज्ञासा की, छोटी सी शिक्षा को स्मरण न कर दोहराने की। अत्यंत विनीत भाव से युधिष्ठिर का प्रत्युत्तर था, आचार्य, यह पाठ तो मुझे उसी दिन हृदयंगम हो गया था, लेकिन देखने का प्रयास कर रहा था कि व्यावहारिक रूप से इसको कितना अपना पाता हूं। उत्तर सुनकर गदगद हो गए आचार्य। सत्य को अपना कर यही युधिष्ठिर धर्मराज बन सके। उपनिषदों ने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा है। मनुष्य चरम सत्य है, उसमें चरम उत्कर्ष का संकेत है। मनुष्य जीवन का हर संभव प्रयास उसकी पूर्णता और सार्थकता में होना चाहिए। मिथ्या से सत्य, मृत्यु से अमृत और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन है। जीवन का लक्ष्य ही हुआ परम सत्य का अन्वेषण, जिससे प्राप्त होता है अखंड आनंद। इसको कल्याणकारी शिव और चिरंतन सत्य से भी जोड़ा जा सकता है। इसीलिए सत्य ज्ञानाश्रित और अनुभवजन्य भी है। सर्व कल्याणमयी आनंद की रसधारा इससे ही प्रवाहित होती है।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आपने सुना सत्य विषय पर आलेख। आलेख था डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का, वाचन था श्री यतीन्द्र चतुर्वेदी का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है महेंद्र कपूर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था महेंद्र कपूर का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: प्रस्तुत है संक्षिप्त विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। उसके पहले 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती की बातें। विषय होगा नेडप कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। सुबह 7:31 पर ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे नौटंकी, गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। लेखक होंगे हेमचंद यद्व।

वंशी, प्रस्तुति होगी नरेश मल्होत्रा की। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज का विषय सब दिवसीय सघन क्षय रोग अभियान। वार्ताकार होंगे डॉक्टर संजीव यादव, भेंट करेंगे जितेंद्र सिंह। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा जलवायु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर संदीप हुड्डा का। गांधी चर्चा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुगम संगीत सुनवाया जाएगा 9:45 पर। और 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी 11 बजे से। प्रस्तुति होगी देवराज कृष्ण दीक्षित की। 11:30 पर अर्पण कार्यक्रम में सुनिएगा गैर फिल्मी भक्ति रचनाएं। मध्याह्न 12 बजे गीत बात और SMS। बारह बजकर 30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं भगवान सिंह जोगी और उनके साथी वनिता लोक। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपराह्न 1:15 पर। चर्चा होगी महिलाओं में पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए योग। दूसरा विषय होगा सुरक्षित मातृत्व और गर्भावस्था की देखभाल। विशेष कार्यक्रम होगा काव्य पाठ योग और संस्कार। कलाकार होंगी डॉक्टर अनुराधा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा अपराह्न 2:30 पर। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30 पर। आज की बात में संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही संज्ञानात्मक स्वास्थ्य और याददाश्त बनाए रखने के लिए योग। गीतों भरी कहानी सुनेगा नन्ही परी देवी का। प्रस्तुति होगी अरुण कुमार की। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम शाम 6:15 पर। चर्चा होगी खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय। साथ ही योग अपनाएं स्वस्थ किसान बने। भेंटवार्ता सुनेगा बागवानी वाली फसलों का महत्व। वार्ता करेंगे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा। इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर। 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज नवकथा सुबुद्धि। कहानीकार होंगे नरेंद्र आत्रेय। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर। रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे अतुल देसाई का ख्याल गायन।

0: ये था संक्षिप्त विवरण आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है नेडब कंपोस्ट बनाने की विधि एवं लाभ। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम नेडब कंपोस्ट बनाने की विधि तथा उससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधि श्री नारायण राव पांडरी पांडे यानी नाडेप काका निवासी ग्राम पुसाद जिला यावतमल महाराष्ट्र द्वारा यह विधि विकसित की गई है। इसमें ईंटों का एक ढांचा बनाते हैं जिसका आकार 10 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा तथा 3 फीट ऊंचा होता है। ढांचे की जुड़ाई पक्के गारे से की जाती है ताकि ढांचे का प्रयोग

लंबे समय तक किया जा सके। इसकी दीवारों में कुछ छेद छोड़े जाते हैं ताकि समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर पानी का छिड़काव किया जा सके तथा वायु संचार भी अच्छा होता रहे। इस ढांचे के अंदर खेत खलियान, घर एवं रसोई से प्राप्त फसल अवशेष जिसमें गोबर, पानी एवं मिट्टी की मात्रा के साथ इसे सड़ाया जाता है। इस विधि में सड़ी खाद बहुत उच्च गुणवत्ता वाली होती है तथा बेकार अनुपयोगी पदार्थ का भी प्रयोग हो जाता है। अब बात करते हैं ढांचा बनाने की विधि का। 9 इंच मोटी ईंट की चिनाई अभी बताई गई लंबाई एवं चौड़ाई के अनुसार बनाते हैं। प्रथम 3 पंक्तियों में कोई छेद नहीं छोड़ा जाता। चौथी, छठी, आठवीं, दसवीं पंक्ति की चिनाई में 1 फुट के अंतराल पर 5 इंच चौड़ाई का एक छेद बनाते हैं। 11वीं, 12वीं, 13वीं पंक्ति में पुनः छेद नहीं छोड़े जाते। ढांचे के अंदर की जमीन को ईंट बिछाकर पक्का कर दिया जाता है। अब बात आती है ढांचा भरने की विधि और उसकी क्या सामग्री होनी चाहिए। तो सामग्री नोट करें, कचरा लगभग 20 से 25 क्विंटल, मिट्टी 5 से 10 क्विंटल, गोबर 3 से 4 क्विंटल, पानी की आवश्यकता पड़ेगी 800 से 1200 लीटर, पीएसबी कल्चर के 4 पैकेट, एजोटोबैक्टर कल्चर के 4 पैकेट, गौमूत्र लगभग 10 लीटर, गुड़ की मात्रा रहेगी 2 किलोग्राम और राख करीब करीब 100 ग्राम। इसकी विधि बनाने की विधि इस प्रकार है, 40-50 किलोग्राम गोबर 100 से 150 लीटर पानी में घोल बना

0: इसकी विधि बनाने की विधि इस प्रकार है। 40-50 किलोग्राम गोबर 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर ढांचे की तह पर डालें। इसके बाद 8 इंच मोटी कचरे की तह दबा दबा कर बिछाते रहें। फिर 30 से 40 किलोग्राम गोबर 100 से 125 लीटर पानी का घोल बनाकर इस कचरे के ऊपर डालें। इसके पश्चात लगभग 100 किलोग्राम मिट्टी को ऊपर से बिछा देवें। यह क्रिया ढांचे की ऊंचाई से लगभग 10 से 12 इंच ऊपर भरने तक दोहराते रहें। बाद में गोबर और मिट्टी की मोटी परत लगाकर ढांचे को ऊपर से बंद कर देते हैं। 70 से 80 दिनों बाद गड्ढे के ऊपर 15 से 20 छेद मोटे डंडे की सहायता से बना देते हैं तथा 10 लीटर गौमूत्र में पीएसबी कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर के 2 पैकेट तथा 2 किलोग्राम गुड़ और 100 ग्राम राख को मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। इस घोल को छेदों में डालकर छेदों को पुनः बंद कर देते हैं। इसके पश्चात 30-40 दिन बाद खाद तैयार हो जाती है।
1: सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,770,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत, जो आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना संजोग फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तांगे वाली फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने, शब्द रचना है प्रेम धवन की और संगीत रचना है सलिल चौधरी की।

धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी धुनक धुनक जब चुड़िया थनकी लहर लहर ओढ़निया लहकी मृदंग ठनका धक धक धक धक नगिन दे दे छगन गदा दा किच धक धक धक छल छक छक छगन का छगन का किच धक किच छक छगन का दी छक नदा ता दा किच छक छगन का ता छगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे

0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे को फिल्म परिवार में। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं माया फिल्म से। गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरे ने।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस

एक सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना ई KYC और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से KVK कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन का।

0: मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
0: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
3: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही है।
3: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार

0: अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा।
1: यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: शिक्षा मंत्री

0: धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आंकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मन में वृत्ति करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैया, यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं नौटंकी गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। लेखक हैं खेमचंद यदुवंशी, प्रस्तुति है नरेश मल्होत्रा की।
1: लीजिए, प्रस्तुत है नौटंकी गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। इसका आलेख खेमचंद यदुवंशी का है। प्रस्तुत करता है नरेश मल्होत्रा।

0: आज आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे अवसर का पूरा लाभ लेने के लिए आप शीघ्र ही ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करें।
1: ठीक कहते हो भैया, चलो

0: भैया ये मनमोहक और अतरमणीय स्थान कौन सा स्थान है ये?
1: महाराज इस समय आप भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा में हैं और ये श्री यमुना महारानी है।
2: But

0: बेटा नंददास, ओलाला नंददास, गोस्वामी जी को मंदिर में लेके चलो।
1: दो आज्ञा महाराज। तुलसीदास चलो भैया चलो।

आपने सुनी नौटंकी, गोस्वामी तुलसीदास की ब्रज यात्रा। आलेख खेमचंद यदुवंशी का था। इसमें भाग ले रहे थे दामोदर शर्मा, ओम प्रकाश, अमरनाथ, होतीलाल, नेम सिंह सिसोदिया और हरिबाबू कौशिक। वादक कलाकार थे बादशाह, ओमकारनाथ वर्मा और बुद्धाराम। इस नौटंकी के प्रस्तुतकर्ता थे नरेश मल्होत्रा।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरा प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को

0: संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी

0: मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी

0: स्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia.

0: Asserted that AI, that is artificial intelligence, means all inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना EKYC और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से KVK कृषि विश्वविद्यालय ICAR के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। हमारा अगला कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

माय नेम इज़ खान। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थीं ऋचा शर्मा, शंकर महादेवन, राहत फतेह अली खां और साथियों की। गीत को लिखा था निरंजन अयंगर ने, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने।

0: अभी आप सुन रहे थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल को फिल्म तेरे नाल लव हो गया। गीत को लिखा था प्रिया पांचाल ने, धुन बनाई थी सचिन जिगर ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

टॉयलेट एक प्रेम कथा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, गीत रचना थी गरिमा बहल की और संगीत रचना थी विक्की प्रसाद की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं केके की आवाज में। फिल्म का नाम है जन्नत।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को। फिल्म का नाम था वास्तव और गीत को लिखा था समीर ने। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
1: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: आइए अब आपको स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुनाते हैं कार्यक्रम। विषय है सब दिवसीय सघन क्षय रोग अभियान। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजीव यादव, भेंट कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
3: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, क्षय रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है। इसके उन्मूलन के लिए बहुत सारे प्रयास समय समय पर किए जाते रहे हैं, आज भी जारी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम सबकी सहभागिता, हम सबका सहयोग जब तक नहीं होगा, ये कार्यक्रम जन आंदोलन का रूप नहीं लेंगे, तब तक कुष्ठ रोग जैसे विशेष रोग को या ऐसी बीमारी को समाज से पूर्णतः उन्मूलित करना थोड़ा मुश्किल काम है। सरकार इसमें बहुत मदद कर रही है, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी संदर्भ में एक ऐसी स्वयंसेवी संस्था जो ब्रज में काम कर रही है टीबी उन्मूलन के लिए, डॉक्टर आर चंद्रावली उससे जुड़ी हुई हैं, उनके अनुभव हम जान लेते हैं, फिर इससे संदर्भ में और आगे की बात करेंगे। आर चंद्रावली जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप व्यावहारिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, इस काम को देख रही हैं, उसमें कि समाज की जो जन सहभागिता तो है ही, लेकिन वो पक्ष जो भावनात्मक है, जो आर्थिक है, जो सामाजिक है, एक संपूर्ण कार्यक्रम ये बन करके जब तक नहीं होगा तब तक शायद हम सफलता की बात नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो जिन चीजों को दोबारा से जोड़ना है, लोगों को समझाना है, क्योंकि आज आर्थिक पक्ष बड़ा है, हर व्यक्ति अपने काम में, अपने एजेंडा में, अपने आसपास के दायरे में इतना वो है कि उसको 6 महीने तक उससे जोड़ के रखना, लोगों को सहयोग की बात करना और उस व्यक्ति को भी ये ढाढ़स दिखाना कि 6 महीने बाद तुम ठीक हो जाओगे, समाज के लिए उपयोगी होगे, तो आप आइए, जुड़िए, सब चीजें हैं। तो एक बड़ा पैकेज है, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक सारे पक्ष जुड़े हुए हैं। आप इसको देख रही हैं, तो कैसे आपको लगता है कि व्यक्तियों को किस तरह मोटिवेट करने की आवश्यकता है यहाँ पर?
4: मैं एनजीओ की तरफ से बताती हूँ कि जो एनजीओ का भूमिका क्या है इसमें।
3: जी,
4: जो एनजीओ है, क्योंकि इतना बड़ा व्यापक एक प्रोग्राम सरकार ने चलाई है, उनको हर तरह की मदद चाहिए, और सरकार के जो प्रोग्राम है उसको एनजीओ अगर बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो भी एनजीओ निक्षय मित्र बन के रजिस्टर करे हैं, उनको ये है कि उनको जो टीबी, जो लोकल टीबी सेंटर से जुड़ना चाहिए, उनसे समय समय पे जो भी मदद की जरूरत है उनको, उस दिशा में उनको काम करना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया रिजल्ट तभी आएगा जब ये कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी एनजीओ की और गवर्नमेंट एजेंसी की
3: और लोगों की।
4: हाँ जी, लोगों की
3: जी।
4: और जो एनजीओ का जो कहीं बिंदुओं पे टीबी में, एक तो सबसे बड़ा जो सरकार ने जो प्रोग्राम निकाली है पोषण का, पोषण वितरण जो हमारा एनजीओ है मंडोना रूरल फाउंडेशन कर रही है, उसमें भी हमारी सारा जो कोऑर्डिनेशन है लोकल टीबी सेंटर के साथ है, कि ऐसे कौन से मरीज है जो हमारे निक्ष आईडी वाले, उनको हमने कोऑर्डिनेट करना, जिसको पोषण देना है। ये सब एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करेंगे तो कभी भी ये प्रोग्राम का हमारा कोई मदद इम्पोर्टेंट नहीं है।
3: जी, जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे सरकार कोई कार्यक्रम लेके जाती है तो लोगों को लगता है कि अरे सरकार का ये काम है, कोई एनजीओ आती है उसको थीम को लेकर के, किसी कार्य को लेकर के, तो लोगों को लगता है कि इनका भी कोई हित होगा। तो लोगों को ये समझाना कि हम अपने हित और सरकार के काम के लिए नहीं आए, इसमें आपका हित भी समाहित है। दूसरे टीवी जैसे कार्यक्रम के साथ, जैसे टीवी हुआ, कुष्ठ हुआ, कुछ रोग ऐसे थे जिनके साथ एक बड़ी झिझक थी, लोग जैसे किसी को अगर टीबी है तो वो एक छुआछूत जैसी समाज में वो चली जाती है, तो आज उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी टीबी हो जाने का मतलब समाज से दूर हो जाने का एक पक्ष भी है। अब उसमें लोगों को जोड़ना, लोगों को सहयोग करना, कि भाई लोगों को जोड़ना है, हाथ पकड़ना है, पड़ोसी सबसे पहले मदद के लिए आए तब काम बनेगा इसमें, तो वो जो कई सारी चीजें

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम?

0: हैं जो भावनात्मक भी हैं और जिनको जो झिझक पैदा कर रही है समाज में, एक जो है थोड़ा सा अलगाव पैदा कर रही है, तो वहां बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है, जब व्यावहारिक तौर पर यहाँ कर रही है ब्रज जैसी स्थिति में, तो क्या चीजें बदली है या अभी भी उसी रूप में दिखाई
1: काफी
0: दे रही?
1: बदली है,
0: जी
1: क्योंकि हमारे जो पेशेंट के साथ जो है उनको कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये हमारा दायित्व है, ये हम
0: जी
1: उनको समझाते हैं, ये हम जैसे जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनको मनोबल देना, बार बार उन्हें टेलीफोन पे हर एक पेशेंट जो हमारे से पोषण देता है उससे पूछा जाता है, आपको जो पोषण मिल रहा है उसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, और उनकी तबीयत के बारे में पूछा जाता है, उनकी वजन के बारे में पूछा जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपका जो वजन बढ़ना चाहिए ये एक इंडिकेशन है कि आपका बीमारी ठीक हो रही है। ये जो उनकी जो मनोबल बनाए रखना
0: जी
1: छह
0: जी जी
1: महीने तक,
0: छोट छोट
1: ये
0: चीजें
1: हाँ जी,
0: पूछते
1: ये
0: रहना
1: एनजीओ
0: उसमें
1: इसमें बहुत कुछ
0: मदद
1: कर
0: कर
1: सकती
0: सकता
1: है।
0: है इसमें।
1: और
0: जी
1: जो ये एक ऐसी बीमारी है, लोग उसे भागना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं,
0: हाँ
1: इसकी सेंसिटाइजेशन हम लगातार करते हैं तो
0: हाँ
1: उससे काफी फर्क पड़ता
0: हाँ
1: है।
0: तो श्रोताओं, ये थी डॉक्टर आर चंद्रावली, इनके विचार आपने जाने सुने, और उनका जो सहयोग, जो जन सहयोग मांग रही है, उसके महत्व को भी आपने समझा। लेकिन अभी सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए जिले में 100 दिवसीय एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। ये कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य क्या है, वो भी जानेंगे। इसमें जानकारी दे रहे हैं हमारे डॉक्टर संजीव यादव साहब, जो जिला क्षय रोग अधिकारी हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी। तो इस बात को भी सुन लेते हैं और फिर जो निष्कर्ष निकलता है वो आपको हम बताते हैं।
2: श्रोताओं, जैसा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया जा रहा है, तो ये अभियान क्या है, इस अभियान को चलाए जाने का क्या उद्देश्य है, इस बारे में हम बात करते हैं हमारे जनपद मथुरा से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव जी से। इस अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं को क्या विशेष जानकारी आप देना चाहेंगे?
3: देखिए, ये इस वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जो हमारी केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष में 100 डेज कैंपेन, 100 दिवसीय सघन क्षय रोगी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमें जो हाई वल्नरेबल ग्रुप है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, स्मोकर्स हैं, एल्कोहलिक्स हैं, तो ये हाई वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है, और ऐसे लोगों में क्षय रोग के होने की संभावना काफी अधिक होती है। तो इनको हमें सबसे पहले निक्षय पोर्टल पर इसको रजिस्टर्ड करना था, और इसके लिए हमें अपने राज्य की तरफ से 224 वल्नरेबल विलेजेस की सूची दी गई थी, जहां पर हमें कैंप लगा करके इन लोगों के एक्सरे और जो बलगम की जाँच होती है जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी यानी नाट टेस्ट से, वो कराई जानी थी। तो उसी में हम कार्य कर रहे हैं इसके अंतर्गत।
2: क्षय रोग के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसके लक्षण रहते हैं, कैसे पहचाने के इस व्यक्ति को क्षय रोग होने की संभावना है?
3: देखिए, क्षय रोग जो है दो तरह का होता है, एक तो पल्मोनरी होता है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़े का और फेफड़े के अलावा। तो पल्मोनरी टीबी जो है सबसे ज्यादा होता है, 80% के करीबन, और इसके जो लक्षण हैं वो ये है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार का रहना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द। इसके अलावा क्षय रोग में वजन का जो है धीरे धीरे कम होना, और अगर बच्चा है तो उसमें वजन कम होना नहीं नोटिस होता है, उसमें वजन का ना बढ़ना छोटे बच्चे में, और रात के टाइम पसीना आना, ये क्षय रोग के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा जो अंग टीबी से प्रभावित होगा, यहाँ मैं बता दूं, नाखून और बाल को छोड़ करके शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकती है, और जिस अंग में टीबी होगी उससे संबंधित लक्षण भी आएंगे। यदि आंख की टीबी है तो विजन प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ब्रेन की टीबी है तो पैरालिटिक अटैक या सीजर्स जैसे झटके लगना कहते हैं, उस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। हड्डी की टीबी भी हो सकती है, खाल की टीबी भी हो सकती है, जिस अंग की टीबी होगी उससे संबंधित लक्षण भी प्रकट होंगे इसमें।
2: अगर जैसे किसी को हड्डी की टीबी होती है तो क्या खांसी उसमें भी होती है?
3: देखिए, अगर हड्डी की टीबी है तो जरूरी नहीं है कि उसको खांसी हो, क्योंकि ये खांसी जो है पल्मोनरी जब इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब लक्षण आता है। तो हड्डी की टीबी में जनरली मरीज को कहीं दर्द हो रहा है या कोई फोड़ा सा बना है या हड्डी में से मवाद आ रहा है, तो इस तरह के लक्षण ज्यादा मिलते हैं।
2: कहीं गलाव या गांठ की स्थिति हो सकती है?
3: जी जी बिल्कुल।
2: तो इसको लेकर हमारे जनपद में किस तरह की स्थिति बनी हुई है?
3: देखिए, हमारे जनपद में जो हम क्षय रोग उन्मूलन

0: का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हमारी अच्छी स्थिति बनी हुई है। राज्य की तरफ से हमें पिछली बार 16,164 मरीज खोजने का जो है टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हमने 17,300 के करीबन मरीज खोजे थे। और इन मरीजों में भी ज़्यादातर संख्या 80% के करीब वो होती है जो दूसरे जनपदों और दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं वृंदावन में टीबी सेनेटोरियम है, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ आकर के वो दिखाते हैं और जहाँ वो डायग्नोस होते हैं वहीं वो नोटिफाई माने जाते हैं, वहीं नोटिफिकेशन उनका किया जाता है। इसीलिए मथुरा का टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा दिया गया था।
1: इसके उपचार के बारे में थोड़ा और हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या टीबी का पूरी तरह से उपचार संभव है?
0: देखिए, आज की तारीख में टीबी टोटली क्योरेबल डिजीज है। जो पहले साधा टीबी जिसे कहते हैं, जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, इसमें 24 हफ्ते इलाज चलता है और वही चार दवाएं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और एथंबुटोल जो 8 हफ्ते तक दी जाती हैं, और 8 हफ्ते के बाद इसमें से पायराजिनामाइड हटा दी जाती है, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन बाकी के 16 हफ्ते तक दिया जाता है। इसके अलावा अगर इन दवाओं से रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसको हम एमडीआर टीबी कहते हैं, तो उसके अलग अलग शेड्यूल होते हैं। इसमें बीपालेम रेजिम चल रहा है, शॉर्टर रेजिम चल रहा है, ऑल ओवर लॉन्गर चल रहा है, और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, 9 से 11-12 महीने तक और 18 से 20 महीने तक भी हो सकता है।
1: अगर किसी व्यक्ति को घर में टीबी है तो अन्य परिवार में जो सदस्य हैं या उनके आसपास के लोग हैं उनको क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है?
0: देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि मरीज जिसको खांसी आंसी है तो वो अपने मुंह पर मास्क लगा के रखे, इधर उधर थूके नहीं। इसके अलावा अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो उसमें हमारे यहाँ से टीपीटी यानी टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी भी शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी केस टीबी का निकलता है जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, तो हम उसके घर के सारे कॉन्टैक्ट्स को बुलाकर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं एक्सरे के द्वारा, या अगर सिम्टम बलगम आ रहा है तो नाट भी कराते हैं कि उसको हम एक्टिव टीबी को एक्सक्लूड करते हुए उसको हम जो टीपीटी की दवाएं वो देते हैं, जिससे कि उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में इन्फेक्शन ना हो सके।
1: तो मरीजों के क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं?
0: मरीजों के आंकड़े जितना ज़्यादा आएंगे, जितने मरीज छुपे हुए बाहर निकल के आएंगे, उतनी हम टीबी एलिमिनेशन की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि एक भी छुपा हुआ रोगी अपने जैसे 8 से 10 पेशेंट साल में और बना देता है। तो सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी नोटिफिकेशन करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा छुपे हुए मरीजों को बाहर निकाल सकें जिससे वो अंडर ट्रीटमेंट आएँ और दूसरे लोगों में उस इन्फेक्शन को रोक सकें।
1: सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को कुछ अनुदान या कुछ राशि वगैरह भी प्रदान की जाती है?
0: देखिए, सरकार द्वारा इसमें जो है अब इस समय हर माह 1,000 रुपये की निश्चय पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हम जो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था कि सभी 6 रोगियों को हम कोशिश करते हैं कि निश्चय मित्र से लिंकेज करा सके और उनको जो पोषण पोटली है उसका मदद प्रदान कराया जा सके।
1: क्या टीबी के मरीजों को विशेष कुछ खान पान का ध्यान रखना होता है?
0: देखिए, टीबी के मरीजों में हाई प्रोटीन डाइट का बहुत महत्व है। अगर टीबी का मरीज की दोनों चीजें मिल रही हैं कि दवा भी रेगुलर ले रहा है और पूरी ले रहा है, उसके साथ साथ अगर उसको प्रोटीन रिच डाइट मिलती है तो उसमें क्योर बहुत जल्दी होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो पोषण पोटली निश्चय मित्र द्वारा प्रदान की जा रही है, जैसा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी आदेश निकाला गया था, तो इसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन की बड़ी है, चना है, और इसके अलावा हम बादाम वगैरह भी दे सकते हैं। जाड़ों के टाइम में हम गजक और गुड़ की भी बात करते हैं, गजक भी दी जा सकती है, उसको सत्तू दिया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें जिनमें प्रोटीन ज्यादा होती है वो मरीज को फायदा पहुंचाती है। इसमें
1: टीबी मरीज अक्सर ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं?
0: देखिए, सबसे पहली चीज तो यही करते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी को और बुखार को वो साधारण बीमारी समझ के इधर उधर कभी झोला छाप से या केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, थोड़े दिन फायदा हो जाता है, वो सोचते हैं हम ठीक हो गए, जबकि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी बुखार में उनको टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि वो अगर बीमारी निकलती है तो ट्रीटमेंट में आ सके। उसके अलावा दूसरी गलती ये जो मरीज करते हैं वो ये है सबसे बड़ी कि जब दवा शुरू होती है तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने जैसा भी है उसमें फायदा आ जाता है, तो उनको लगता है अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, ना हमें खांसी है ना हमें बुखार है, तो वो अगर दवा छोड़ देते हैं तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर प्रॉपर ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसमें अगली बार एमडीआर टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें कि मृत्यु दर भी ज्यादा होती है और उसके इलाज का जो ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा होता है।
1: यानी इसमें दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, दवाइयों का पूरा कोर्स और पूरी डोज में दवा लेनी चाहिए, अदरवाइज रेजिस्टेंस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं।
1: हमारे श्रोताओं से या जो टीबी रोगी हैं उनसे क्या कहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि टीबी आज की तारीख में टोटली क्यूरेबल डिजीज है। किसी को भी अगर इससे संबंधित लक्षण लगते हैं तो अपने एक नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला स्तरीय अस्पताल, कहीं भी जाकर के अपने बलगम की जांच कराएं, अपना एक्सरे कराएं या संबंधित जो अंग है उसकी जांच कराएं, और अगर टीबी निकलती है तो उसका तुरंत इलाज पूर्णतः निःशुल्क शुरू किया जाता है।

0: है और ये बीमारी जड़ से पूरी तरह ठीक हो जाती है।
1: तो श्रोताओं हमारे साथ रहे जिला क्षय रोग अधिकारी मथुरा डॉक्टर संजीव यादव जी, और जैसा कि बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह।
2: स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव यादव से जितेंद्र सिंह की बातचीत, विषय था 100 दिवसीय सघन क्षय रोग अभियान। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का।
2: प्रदेश भर में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 20 मई से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं गणना कर रहे हैं। जनगणना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को उप जिलाधिकारी चंदोशी नीतू रानी द्वारा कार्यालय पर एक पुष्प तथा पुस्तक तथा शॉल देकर सम्मानित किया। जनपद संभल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु 4080 प्रगणक एवं 680 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ये सभी कार्मिक 20 जून 2026 तक घर घर जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। जनपद प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में पूछे जाने वाले कुल 33 प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। प्रथम कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत जनपद में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति वन बबराला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरी संकरी वृक्षारोपण करते हुए पीपल, बरगद एवं पाखड़ के पौधे रोपित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार, राजू यादव तथा नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष हर्षवर्धन बासणे द्वारा त्रिवेणी वृक्षारोपण के अंतर्गत पीपल, बरगद एवं नीम के पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मात्र सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जनपद संभल के लिए वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा नगर विकास विभाग के सहयोग से 456,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय संभल परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम, अर्जुन एवं गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया तथा अस्पताल परिसर से श्री शंकर चौराहे संभल तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मदद करने वालों के लिए अब मददगार नहीं राहगीर नाम से पुकारा जाएगा। रास्तों या हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर कम करने एवं घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में राहगीर गुड सैमिट रिटर्न योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना और उन्हें सम्मानित करना है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगारों गुड सैमिट रिटर्न के लिए ये अहम पहल की है। प्रदेश में अब ऐसे मददगारों को राहगीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दी जाने वाली इनामी राशि को 5,000 रूपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रूपए कर दिया गया है। राहगीर योजना के अंतर्गत 5 शर्तों के आधार पर 25,000 रूपए का इनाम राहगीर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यूपी में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमे रिटर्न को राहगीर योजना के रूप में

0: लागू किया गया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक के मददगारों का डेटा जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विकासखंड गिन्नौर के ग्राम बागव में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक जनपद पांच नदियों थीम के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ जनपद में एक जनपद पांच नदियों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विलुप्त प्राय एवं अस्तित्वहीन होती जा रही नदियों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्धमार नदी के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नदी की पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाने, खुदाई, पौधारोपण तथा अन्य संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। संबल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हवन एवं आहुतियों के साथ किया गया। योगाचार्य ने निरंतर योग करने से शरीर में पनप रही तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलने का विश्वास दिलाया। जनपद संभल में चंदोसी, भेजोई, संभल, बबराला, गिन्नौर, असमौली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार योगाचार्य ने योग के आसन कराए, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे।
1: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनपद भ्रमण पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनका लाभ आम जनता को पहले कभी नहीं मिल रहा था। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमानी होती थी, आज भाजपा के कार्यकाल में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ उत्साह, जन भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया गया। जनपद के विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा आमजन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कैंप कार्यालय परिसर में मौल श्री का पौधारोपित करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि जीवन संवेदना और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विगत दिनों नगर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुँच कर स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन तथा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ व विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को शैक्षणिक किट प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक एवं कौशल आधारित गतिविधियों में भी दक्षता प्राप्त करें, जिससे वे भविष्य में ससम्मानजनक एवं स्वावलंबी बन सकें। मानसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनीघाट तहसील प्रशासन ने कोयला और खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मार्क ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मार्क ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों की उपलब्धता की भी जांच की गई। SDM अनुराग सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विगत दिनों नागरिक सुरक्षा, सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय देश एवं विश्व के लिए अनेक चुनौतियों भरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां भी मानवीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में मानवता की सेवा एवं राहत कार्यों में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संगठन में चयनित चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, वार्डन सेवा तथा सेक्टर वार्डन पदों पर नियुक्त स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए

0: पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देशानुसार जनपद में 5 जून से 21 जून तक व्यापक स्तर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों, सुशासन की उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम सेवा, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप जन केंद्रित, प्रभावी एवं सहभागिता पूर्ण हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी ऑडिटोरियम बाराबंकी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों एवं आम जन ने सहभागिता की।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। विषय है जलवायु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव। आलेख और वाचन है डॉक्टर संदीप हुड्डा का।
3: अक्सर कहा जाता है कि जलवायु वह है जिसकी हम आशा करते हैं और मौसम वह जो हमें मिलता है। मौसम में बदलाव को हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन में कुछ अधिक समय लगता है। जलवायु वास्तव में समय के एक निश्चित अंतराल में एक जगह का औसत मौसम है। पृथ्वी का अनुपम पर्यावरण जिस पर जीवन संभव है वो कई घटकों जैसे वायुमंडल, सागर, पृथ्वी एवं जीव जंतुओं के परस्पर अंतःक्रियाओं द्वारा संचालित एक संयुक्त तंत्र है। वायुमंडलीय, सामुद्रिक एवं जैविक प्रेक्षणों से ये प्रमाणित होता है कि ये तंत्र स्थिर नहीं है अपितु परिवर्तनशील है। विगत कुछ दर्शकों में मानव जाति द्वारा आर्थिक विकास के नाम पर किए जाने वाले अंधाधुंध क्रियाकल्पों ने पर्यावरण परिवर्तन को स्थान और क्षेत्र विशेष के दायरे से निकालकर विश्व के किसी न किसी हिस्से में बाढ़, सूखा, ताप, लहरी, शीतलहरी इत्यादि की घटनाएं प्राकृतिक रूप से हर वर्ष घटित होती रहती हैं। जब इस तरह की वैज्ञानिक विसंगतियां किसी भी प्रदेश में लगातार कुछ वर्षों या दशकों तक जारी रहती है तो ये उस प्रदेश की विशाल जनसंख्या पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालती है। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ से हो रही मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को अप्रत्याशित रूप से बदल दिया है। जलवायु परिवर्तन के घातक प्रभाव हैं। बिगड़ता हुआ प्राकृतिक संतुलन, ग्लोबल वार्मिंग के चलते विश्व भर में हो रहे परिवर्तन के कारण प्रकृति को संतुलन बिगाड़ने लगा है। अगर कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकृति जन्य प्रक्रिया का हिस्सा है जो एक निश्चित समय चक्र पर लगातार होती है। इसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लगातार परिवर्तनशील होना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से होने वाले ये प्रक्रियाएं प्रजातियों के क्रमिक विकास के लिए फायदेमंद होती है। हालांकि ये सिद्धांत पूरी तरह मान्य नहीं है और देखा जाए तो मानव गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों में तेजी से जलवायु परिवर्तन तेज हो गया है। अनेक पर्यावरणविदों व वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा जलवायु परिवर्तन निकट भविष्य में कई प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जलवायु परिवर्तन का सबसे दूरगामी प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों पर। तापमान के कुछ डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे होने पर से कई प्रजातियों के विलुप्तीकरण का खतरा पैदा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है क्षेत्र के स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर जो कि बहुत ही नाजुक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित कनाडा के बर्फीले मैदानों में ध्रुवीय भालू गायब होते जा रहे हैं क्योंकि कनाडा में बर्फीला क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। ध्रुवीय भालू के प्राकृतिक रहवास में बर्फ उनकी खाद्य श्रृंखला में के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है। आर्कटिक समुद्र में भालू शिकार के लिए सिर्फ बर्फ पर निर्भर है। ये जीव खुले समुद्र में सील व मछलियों का शिकार करते हैं, समय बर्फ का एक अस्थायी मंच के रूप में उपयोग करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्कटिक समुद्र में बर्फ प्रतिवर्ष 9% की दर से पिघल रही है। ये समुद्र ही ध्रुवी भालू का एकमात्र निवास स्थान है जहां उसके अस्तित्व पर खतरा छा गया है। उत्तरी अटलांटिक के सबसे बड़े और शानदार प्राणी वेल से मानव द्वारा शोषण का एक लंबा इतिहास जुड़ा है, लेकिन अब समुद्र के पानी के तापमान में वृद्धि के कारण वेल का आहार प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पानी का तापमान बदला है, जिसके प्लांकटन और कवक की संख्या में अप्रत्याशित कमी देखी गई है। मानव प्रजाति के भी खतरे में आने की शुरुआत हो चुकी है। बेतहाशा आबादी और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर रहा है। प्रकृति की हर प्रजाति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। एक प्रजाति का सर्वनाश दूसरी प्रजाति पर आसन्न खतरे को अधिक विकट बनाता है। घटते संसाधनों को और बढ़ती मांग ने इस समस्या का और भी जटिल बना दिया है, जिसे जल्दी सुलझाना पूरी पृथ्वी के लिए हित में होगा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं गांधी चर्चा। विषय है संस्कार, विषय पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुति है आगरा केंद्र की।
4: गांधी चर्चा में पहले सुनिए बापू के विचार।
5: मेरे पिता कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय, शूर, उदार किंतु क्रूर भी थे, थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में ये धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उनका विरोध किया। साहब नाराज हुए। पिताजी से माफी मांगने के लिए कहा गया। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में बंद भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दे दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। मेरे मन में ये छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु थीं। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन नहीं करती। हमेशा वैष्णव मंदिर जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था। व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ी पर व्रत छोड़ा नहीं। चातुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए एक सामान्य बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मास में उन्होंने ये व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करें। ये तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं जब हम सूर्य को देखते और माँ को पुकारते और माँ उतावली होकर आती, इतने में सूरज छिप जाता और माँ ये कहते हुए लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थीं। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माता जी मुझे भी अपने साथ दरबारगढ़ ले जाती थीं। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादोबदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े सीखे थे। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात तो नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा हूंगा, ग्राम शाला से उपनगर की शाला में और वहां से हाई स्कूल में। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेख

0: लिए है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द कैटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपनी बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे ये ख्याल ही न हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने ये माना था कि शिक्षक तो ये देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी न सीख सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कम नहीं हुआ।
1: ये थे बापू के विचार और अब हम आपको सुनवाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, विषय था संस्कार, विषय पर गांधी जी के विचार, प्रस्तुति थी आगरा केंद्र की। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

गंदगी से प्रदूषण फैलता है, इसलिए अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

जो जीता वही सिकंदर। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, जिसे गाया था साधना सरगम और उदित नारायण ने। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत।

कर्ज फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने।

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: Big Holy number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
3: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना किशोर कुमार को, फिल्म अमर अकबर एंथोनी में गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

जब जब फूल खिले। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, आवाज थी मोहम्मद रफी की, साथ में आवाज थी नंदा की। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत काला पत्थर फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सुना काला पत्थर फिल्म का ये गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को कब तक चुप रहूंगी इस फिल्म में। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है हीरो फिल्म से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की।

हीरो फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर उधास की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हरियाली और रास्ता फिल्म से, गाया है लता मंगेशकर ने।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके

0: साथ देवराज। जी हाँ श्रोताओ, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओ, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
2: परम आदरणीय आवाज के जादूगर दीक्षित साहब को सादर सा प्रेम का
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: जी हृदय धन्यवाद। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल अच्छे हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और क्या कहना चाहेंगे?
2: बस यही कि स्वस्थ है, मस्त है, आनंद से आकाशवाणी मथुरा वृंदावन को सुनते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खूब आनंद ग्रहण करें गीत और संगीत का।
1: जी बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए।
2: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ताजमहल।
1: जी
2: जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं।
1: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी।
2: जी हृदय से धन्यवाद। आभार। आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार
1: डिया नावानी हूँ चकबड़ा कैंप से। बहुत
0: नारवानी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं,
1: बढ़िया हूँ सर,
0: परिवार में कैसे हैं सब?
1: सब बढ़िया है, बिल्कुल कुशल मंगल है।
0: जी, बहुत दिनों के बाद हमसे बात हो रही है आपकी।
1: जी, बहुत दिनों बाद भी लगा रहा, सही कहना है।
0: जी
1: बाकी मौसम के बारे में बता दूं तो मौसम तो यहाँ से अभी तक बहुत दिनों से पानी आया नहीं है, कभी कभार थोड़ी सी बूंदाबांदी शाम को हो जाती है, हवा तूफान आ जाता है।
0: जी जी
1: आज बदली छाई है, सुबह से सूरज भगवान दर्शनी भी है।
0: चलिए उम्मीद कीजिए भविष्य में अच्छी बारिश हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल होगी सर, क्योंकि क्या है, अब जून का महीना आ गया है
0: जी
1: और छत्तीसगढ़ में 15 जून के बाद बारिश की संभावना की जाती है। बस
0: जी जी बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
1: यही कहूंगा सर, बरखा आने से कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल बर जान पाए झूम कर बरसो।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का यही गाना। बहुत बहुत धन्यवाद नारवानी साहब।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े भी मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
0: स्वागत है योगेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है भैया, अच्छे हैं।
0: और बेमित्रा में कैसे हालचाल हैं सबके?
1: मौसम तो अभी मतलब अभी भी धूप रहता है भैया, हम बारिश का इंतजार है अभी भी।
0: जी, बारिश का इंतजार है बेसब्री से सभी को।
1: जी
0: और परिवार में सब ठीक हैं आपके?
1: ठीक है भैया।
0: बताइए आज योगेश जी कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए?
1: फिर मैं प्यासा सावन से सुनवा दीजिए,
0: जी,
1: मेघा रे मेघा रे।
0: मत परदेस जा रे,
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: हेलो आकाशवाणी
0: हेलो आकाशवाणी।
2: सर, नमस्कार
0: नमस्कार।
2: सर, कैसे हो आप?
0: एकदम।

0: बच्चे हैं हमारे, कौन से श्रोता हैं फोन लाइन पर?
1: सर मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बोल रहा हूँ, अड़िंग से। सर
0: यादव जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर। और हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: इच्छा करे आप ऐसे ही स्वस्थ मस्त रहें सर। बहुत ही आनंद आ रहा है सर इस समय, गीत संगीत के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम भी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है आकाशवाणी से। सर
0: बताइए यादव जी, आज के कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या रहेगी?
1: सर एक फिल्म है प्यासा सावन
0: जी,
1: का एक गीत है मेघारे मेघारे मत परदेश जा, शिवराज प्रेम का संगीत वर्षा।
0: सुनवाते हैं यादव जी आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर हमारी कॉल एक्सेप्ट करने के लिए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी,
0: दीक्षित सर को मेरा सादर भरा प्रणाम।
1: नमस्कार, स्वागत है
0: सर। आप कैसे? हमारी आकाशवाणी टीम कैसी है सर?
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जानना चाहते हैं हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
0: सर मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर, गांव उस पार से सर।
1: जी यादराम जी, क्या हाल चाल है?
0: ठीक है सर, आपकी दुआएं, कन्हैया जी की कृपा है हमारे ऊपर।
1: जी जी, होनी भी चाहिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं
0: सर? श्रद्धालुओं ने साहब खूब परिक्रमा लगाई है और अपने मनोभावना मतलब अपनी पूरी करी है सर
1: जी,
0: और भंडारों का भी सर खूब आयोजन हुआ है
1: जी बिल्कुल।
0: और सर हमारे जो है शासन प्रशासन का भी सर खूब योगदान रहा है
1: जी बिल्कुल। बताइए आज के कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है यादराम जी?
0: सर हमारी फरमाइश रहेगी साधना फिल्म है सर कोई
1: जी।
0: कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ तो हर चीज बिकती है।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: राधे राधे।
2: कहो जी तुम

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार।
1: तो सर कैसे हैं आप?
0: एकदम अच्छे हैं। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं राम सेवक बोल रहा हूँ, सोमखेड़ा से।
0: सेवक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: और सर
0: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बस सभी ठीक है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि आप सभी स्वस्थ रहे,
0: जी जी
1: खुश रहे।
0: सेवक राज जी, क्या करते हैं आप?
1: सर कुछ नहीं, गांव में रहता हूँ, थोड़ा बहुत लाइब्रेरी का काम आता है तो वो कर लेता हूँ।
0: अच्छा अच्छा बहुत दिनों के बाद कॉल लगाया आपने।
1: जी सर, काफी समय टाइम वेस्ट करने के बाद में कॉल मिला है।
0: चलिए अच्छी बात है, फोन मिल गया है। बता दीजिए फरमाइश।
1: सर दरगुमी से जाना है
0: जी।
1: गोपाल तेरे आने बिना,
0: दरस दिखलाए बिना।
1: सर जी सर
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: ठीक है, जय श्री कृष्ण।
0: जय श्री कृष्ण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम अर्पण।

अभी आपने सुना कोहिनूर फिल्म का ये गीत, स्वर थे मोहम्मद रफ़ी के। अगला गीत सुनवाने से पहले श्रोताओं आपको बता दें कि आज दिन में 12 बजे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में हमारा आज का विषय रहेगा, आपकी ज़िंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है और क्यों है। बस आपको इसका उत्तर देना है कि आपकी ज़िंदगी में सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है और क्यों है। तो लिख दीजिए एसएमएस में अपने दिल की बात, और हमारा फ़ोन नंबर तो आपको पता ही होगा, लेकिन हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़ रहे हैं उन्हें भी बता दें, हमारा फ़ोन नंबर है 94-122-25-575। और अभी हमारे कार्यक्रम में जो श्रोता हमारे साथ में जुड़ें, अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम ही लिखें, उसमें बहुत सारी डिटेल आप लोग लिख देते हैं, मोहल्ले का नाम, आसपास के क्षेत्रों का नाम, उतना ना लिखें, केवल अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम लिखें और हमें भेज दें एसएमएस कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म हम दोनों का ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत बात एसएमएस में आज दिन में 12 बजे हमारा आज का विषय रहेगा, आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है और क्यों है। आपने संदेश हम तक ज़रूर पहुंचाइए कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में।

इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण और प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हूं मैं, इस कार्यक्रम की होस्ट और आपकी दोस्त आरजे रश्मि। और श्रोताओं, आपको बता दूं कि आज दिन में 12 बजे कार्यक्रम गीत बात एसएमएस में हम बात करेंगे आपसे एक खास विषय पर। जी हाँ, आज का हमारा विषय है आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है और क्यों है। आपको लिख भेजना है अपना संदेश व्हाट्सएप के जरिए, हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। नंबर वही 94 122 25 575।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

0: रविंद्र साठे को आपने सुना फिल्म युग पुरुष में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अर्पण अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बात और SMS।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीत, बात और SMS।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

जैसा कि कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि आज का हमारा जो सवाल है वो यही है कि आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा है और क्यों है। और हमारे श्रोताओं के एसएमएस हम तक पहुंच रहे हैं और मैं जल्दी से आप सभी के एसएमएस लेना आरंभ कर रही हूं। ये एसएमएस आया है डॉक्टर के मिश्रा का वेटनरी कॉलेज से। आपने लिखा है, भाई बहन का रिश्ता एक अद्भुत रिश्ता और

श्रोताओं, कहते हैं रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। कभी दोस्ती मुस्कुराना सिखाती है, तो कभी माँ की ममता हिम्मत देती है, तो कभी कभी अपने किसी एक की छोटी सी बात पूरी दुनिया बदल देती है।

क्यों है। और हमारे श्रोताओं के एसएमएस हम तक पहुंच रहे हैं और मैं जल्दी से आप सभी के एसएमएस लेना आरंभ कर रही हूं। ये एसएमएस आया है डॉक्टर के मिश्रा का वेटनरी कॉलेज से। आपने लिखा है, भाई बहन का रिश्ता एक अद्भुत रिश्ता और कि बचपन से लेके बड़े होने तक जब हम साथ रहते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत यादें हमारे जहन में हमेशा बनी रहती हैं इस रिश्ते के प्रति। और इस रिश्ते की तो बात ही अलग है। और हमारे और श्रोता जो हमें एसएमएस कर रहे हैं ये हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। रिश्तों को जोड़ कर रखें और अपनों से अपने दिल की बात करें। बिल्कुल दिल की बात तो करनी चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है और आप किसको अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं। और ये हमारे पास में आया है भिलाई छत्तीसगढ़ से इन श्रोताओं का एसएमएस। मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा लिखते हैं, रिश्ते मानव जीवन का सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जो हमें प्रेम, सुरक्षा और अपनापन देते हैं। ये भावनात्मक सहारा बनकर हमारे जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाते हैं। बहुत सही बात आपने लिखी है। और ये रिश्ता है हमारा, लिखने वाले जो श्रोता हैं अभय कुमार, सनातनी, शिवानी, प्रियंका, रिया, जिया, आयुषी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंत लाल सा, हीरा मोती, पन्ना लाल सा। और आपका जो गांव या शहर का नाम है वो है झुमरी तलैया, पिहरा बाजार से आपने हमें एसएमएस लिखा है। आपने लिखा है कि शादी विवाह रिश्ते का चयन बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि तनिक सी भूल चूक से यदि गलती हो जाए तो रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बात लिखी है, लेकिन मैंने आज आप जो से जो सवाल किया था वो ये था कि आपकी रिश्ते, आपका जो रिश्ता है किससे सबसे ज्यादा प्रगाढ़ है। मतलब कई बार होता है ना, हम किसी के बहुत करीब होते हैं, जरा सी सी कोई भी बात होती है तो हमारा दिल करता है कि हमें उसके साथ शेयर करनी है अपने दिल की बात। तो बस ऐसी ही दिल की बात जिससे आप शेयर करना चाहते हो, जिससे आप अपने मन की बात कह पाते हो, बस वही आप हमें लिखकर भेजिए। ये एसएमएस हम पर आया, हमारे पास में आया है मंसूर रेडियो लिजनर क्लब के श्रोताओं का, मुंगासीपुर से। और ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। लिखते हैं कि हमारे लिए भाई बहन का रिश्ता और एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत अनमोल होते हैं। जी बिल्कुल, कहते भी है ना, बेटियां पिता के बहुत करीब होती हैं और पिताओं की लाड़ भी जो सबसे ज़्यादा होता है ना, माँ का लाड़ला बेटा होता है अक्सर घर में देखने को मिलता है, और पिता का जो लाड़ होता है, जो स्नेह होता है, वो पुत्री पर ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये रिश्ता हमारा जो है आपके साथ में और उसी रिश्ते के साथ में हमारे श्रोताओं के भी खूबसूरत से एसएमएस हम तक पहुंच रहे हैं। ये एसएमएस आया है इन श्रोताओं का, वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज और गुड़िया बानो डुमराव से आपने एसएमएस भेजा है। दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत है और इसमें हम सारी बातें शेयर करते रहते हैं। चलिए, दोस्ती की बात आपने की है और फिर हो जाएगी।

ये एसएमएस हम तक आया है इन श्रोताओं का। लिखने वाले श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर लिखते हैं। जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता वह होता है जिसमें विश्वास, प्रेम, सम्मान और अपनापन हो। ये रिश्ता माता पिता, जीवन साथी, मित्र के साथ में हो सकता है और जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता विश्वास का होता है। सच्चे रिश्ते सुख दुख में हमेशा साथ निभाते हैं। रिश्तों की मजबूती प्रेम, सम्मान और समझ से बढ़ती है। अनमोल रिश्ता वो है जो बिना किसी स्वार्थ से निभाया जाए। ऐसे रिश्ते जीवन को खुशियों और आत्मीयता से भर देते हैं। बहुत बहुत प्यारा सा इसमें साथ में भेजा है।

SMS हमारे पास आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। जिंदगी का सबसे अनमोल रिश्ता होता है दोस्ती, जिसमें स्वार्थ नहीं सिर्फ अपनापन, विश्वास और सच्चा साथ हो। ऐसे रिश्ते जीवन को खुशियां, हौसले और प्यार से भर देते हैं, बिल्कुल प्यार से भर देते हैं। आपके SMS भी जब हम तक पहुँचते हैं, ये SMS हमें भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। लिखते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता पति पत्नी का होता है जो दोनों पहियों के पहलू से जुड़ा है।

देखिए श्रोताओ, हमारे कुछ श्रोताओं ने तो यारी रिश्ता जो कुछ भी निभाना है वो रेडियो से ही निभाना है, तो ऐसा ही प्यारा सा एक एसएमएस हमारे पास में आया है बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से, रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन का, हमारा अनमोल रिश्ता रेडियो से है क्योंकि हम तन मन धन सब रेडियो को समर्पित कर दिए हैं। तो भाई समर्पण की बात जब आपकी हो रही है तो समर्पण हमारा भी पूरा है आपके एसएमएस के प्रति। जो श्रोता हमें हमारी बात के साथ में एसएमएस हमने शामिल उन सभी को करने की कोशिश की है और कर रहे हैं जो हमारी बात से आज जुड़े हैं। बिल्कुल, ये एसएमएस आया है यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से और विनोद खड़से का। लिखते हैं, परिवार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और रिश्तों की गर्माहट ही खुशियों को सच्चा अर्थ देती है, इसलिए हमेशा अपने परिवार का सम्मान करें। बिल्कुल, और ये एसएमएस हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखिला।

गोपाल वर्मा का, मेरी जिंदगी का सबसे प्रगाढ़ रिश्ता मेरे परिवार से है। बिल्कुल। और ये एसएमएस हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, बेबी वैदेही, बेबी अंशिका, और हैं अंकित जोशी और जयवंती केवट जी। आपने लिखा है रेशमी दीदी नहीं हूँ भाई, मैं रश्मि दीदी हूँ। रश्मि रश्मि रश्मि, आप रेशमा ना लिखा करें। तो आपने लिखा है कि माता पिता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है और इसे कोई भूल नहीं सकता। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कहा जाता है मातृ पितृ ऋण के रूप में भी हमें अपना जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यानी हम इस धरती पर हैं तो अपने माता पिता के कारण ही हैं और उनका एक ऋण है जिसे हर संतान को आगे तक उनकी केयर के साथ, उनके प्यार के साथ, यानी जब माता पिता बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिस प्यार की, जिस केयर की उनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर उन्हें देनी चाहिए। अब जी ये SMS आया है हमारे इन श्रोताओं का, लिखने वाले हैं जाखुद राजस्थान से, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। रश्मि दीदी, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार स्वीकार करें जी, कर लिया जी। आगे आप लिखते हैं कि दीदी हर रिश्ता अपनी जगह सही होता है अगर विश्वास के साथ में निभाया जाए तो। बिल्कुल, विश्वास हर रिश्ते का आधार है। ये SMS हमें भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। सबसे नज़दीकी और प्यारा रिश्ता माँ और बच्चों का होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, माँ और बच्चों का रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और इस रिश्ते की तो खैर बात ही अलग है। और ये SMS हमें भेजा है मामुला वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइड़े, वसंतराव भोजने, तुषार और PS नावकर ने। लिखते हैं सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिसमें सुरक्षा, समझ और सच्चाई तीनों हो। किसी के लिए ये रिश्ता माँ बेटे का होता है क्योंकि वहाँ बिना शर्त प्यार मिलता है। किसी के लिए दोस्ती का रिश्ता जहाँ बिना जज किए अपनी बात आप रख सकते हो। किसी के लिए जीवन साथी का रिश्ता जो हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ा रहे। लेकिन अगर सच बोलूं तो खुद से बना रिश्ता सबसे अच्छा है। वाह वाह, तालियां इस बात पर। तो सेल्फ लव बिल्कुल होना भी चाहिए। जब आप खुद को समझते हो तो खुद से झूठ नहीं बोलते, खुद की इज्जत करते हो और तब बाकी सारे रिश्ते अपने आप खूबसूरत बन जाते हैं। भाई बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दी है, दिल तो कर रहा है अभी सुनवा दूँ एक गाना, लेकिन क्या करूँ, SMS बहुत सारे हैं, मुझे शामिल करने हैं सभी के SMS। तो चलिए आप अगला SMS में लेती हूँ। फुटानी चौक नरेन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा हमें लिख रहे हैं जीवन यात्रा में मधुर रिश्तों का होना जीवन को अर्थ और पहचान देते हैं। रिश्तों का अंकुरण प्रेम से होता है, ये जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से। क्या बात है, आपसी प्यार, सम्मान और विश्वास के रसायन से। वाह, रसायन क्या शब्द निकाला है आपने। रिश्तों को आत्मीय और सुमधुर बनाया जा सकता है। वैसे रिश्तों में अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन सच में अपना कौन है ये वक्त बताता है। लोगों का बदलना, रिश्तों का बदलना या फिर मौसम का बदलाव चाहे दिखाई न दे मगर ये बदलाव महसूस तो हो ही जाते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को समय देते रहना और उनकी कद्र करते रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें खो देने के बाद बस पछतावा ही रह जाता है। वैसे मेरी नज़र में दोस्ती सबसे बड़ा रिश्ता है। वाह क्या बात है, बहुत ही सुंदर SMS आपने लिखा है। और अगले जो हमारे श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, ये लिखते हैं विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू। कहाँ से लिख रहे हैं जी? आप लिख रहे हैं रामगंज खंडवा से। हमें लिखते हैं सभी रिश्तों में अलहदा रिश्ता होता है। अलहदा ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। चलिए शुक्रिया एक नया शब्द देने के लिए। दोस्ती का रिश्ता सबसे अच्छा होता है।

है जिसे कोई और नहीं हम स्वयं बनाते हैं। हाँ, दोस्ती यारी में स्वार्थ को जगह नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। दोस्ती तो दोस्ती है भाई, और दोस्ती की ही बात हमारे इन श्रोताओं ने भी की है। ये हैं श्रोता, कहाँ से हैं जी? राज दरबार, राजनगर, बिहार से। ये हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राज बहादुर शाह, शंभू शाह, जय वीरू, जय वीरू, क्या बात है, गोदावरी देवी। और आप लिखते हैं कि हमारी जिंदगी का अनमोल रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती रिश्ता हमारे लिए सबसे खास है, दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे जो श्रोता हमसे जुड़े हैं, ये हैं श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीन बानो, एलिजा और लड्डू लिखते हैं, मैं थोड़ा और जीवन चाहता हूं, इतना कि जिनसे घृणा है उनसे भी प्रेम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। और ये SMS हमें किसने भेजा है जी? ये SMS आया है मुजफ्फरपुर बिहार से, आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार लिखते हैं, रश्मि दीदी जी, हमें तो सबसे अच्छा अनमोल रिश्ता भाई बहन का और देवर भाभी का भी, ये दोनों रिश्ते हम एक साथ बनाकर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, आपका और हम सभी श्रोताओं का दोस्ती का रिश्ता भी अनमोल है, बिल्कुल अनमोल है जी। आप शामिल हो जाते हैं तो बस बातें हो जाती हैं और ये कार्यक्रम सुंदर हो जाता है। ये हमारे पास में SMS आया है इन श्रोताओं का, लिखने वाले श्रोता हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश। हमारी ज़िंदगी में दोस्ती का रिश्ता अहम है क्योंकि दोस्त से हर बात साझा कर सकते हैं। और ये हमारे

एसएमएस हमें भेजा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा ने। भाई बहन के रिश्ते जैसा कोई भी नहीं, प्यार भी है, तकरार भी होती है, फिर टूटना मनाना। इस रिश्ते में जो आनंद आता है वो किसी और में नहीं होता। भाई के हिस्से का खा जाना फिर चिढ़ाना, ये परमात्मा की दी हुई रहमतें हैं। और भाई का सर भी दर्द हो जाए तो बहन को खाना अच्छा नहीं लगता। बड़ा खूबसूरत रिश्ता है ये।

ये SMS आया है शिवाजी नगर से, वडाली देशमुख से, राजेश खोबरगड़े, शिव सागर, इंदिरा ताई, दीपाली, सुनैना, स्वराज और तनुज का रिश्ता, माँ बाप का, भाई बहन का, सभी का एक अटूट प्यार के साथ होना चाहिए, और ऐसा है तो घर एक मंदिर है।

ओबरीकॉट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से लिख रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और अब्बासी परिवार के सदस्य। रश्मि जी, हमारा सबसे अच्छा रिश्ता हमारी शरीक हयात से है। हर बात हम उसी से शेयर करते हैं और बच्चों के साथ बिठा कर भी बात करते हैं।

ये SMS आया है हमारे पास में चांदनी चौक पंडरिया से, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, आप सभी लिखते हैं, जिस घर परिवार में माँ और पिता साथ साथ रहते हैं वह परिवार हर समय खुशमय जीवन जिया करते हैं, इसलिए कभी भी अपने माता पिता को अपने से अलग ना करें। और ये रिश्ते की बात जो हम अपने श्रोताओं के साथ कर रहे हैं, अलग अलग रिश्ते को सब अपने जीवन में देखते हैं, और ये श्रोता लिख रहे हैं हमें SMS, नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबीसिया जालना से हैं, सोमनाथ यादव, गीता यादव, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ यादव और संगीता यादव लिखते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता माँ बाप का होता है। और ये SMS हमें भेजा है इन श्रोताओं ने, सतवीर सिंह, बिजारनिया, देवेंद्र, राजपल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या, बिजारनिया, आप लिखते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत है। और ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमाक्षी लिखते हैं, मैडम प्रोग्राम का समय बढ़ाएं। अरे भाई, इस प्रोग्राम का समय कैसे बढ़ाएं, हर प्रोग्राम का अपना समय है। और ये रिश्ता हमारे लिए खूबसूरत है, जी हाँ, दिल से दिल का रिश्ता जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो ये SMS हमें भेजा है तख्तपुर छत्तीसगढ़ से उमेश कुमार साहू, अंतरा साहू और प्रभा देवी साहू ने।

ये SMS आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का। रिश्ते में एक ही बात है, जब चाहे रिश्ता दोस्ती का हो, चाहे समाज में पारिवारिक हो या अन्य किसी भी रिश्ते से हम जुड़े हों, जिसमें भी हम जुड़े, उस रिश्ते को हमें बरकरार रखना चाहिए। रिश्तों में खटास नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाए तो, किसी शायर ने कहा है, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए, रिश्ता दिल मिले ना मिले हाथ मिलाती रहिए। क्या बात है।

अपनी दोस्ती को याद कर रहे हैं हमारे ये श्रोता यवतमाल से हैं, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। स्कूल की दोस्ती अजीब होती है, कई साल बाद मुलाकात हुई तो ये भावना और वो जज्बात

लातूर से लिख रहे हैं संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन लिखते हैं रश्मि दीदी जी, आप बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ जी, और आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आपने लिखा है कि भाई बहन का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, लेकिन शादी के बाद उसमें थोड़ी दूरियां हो जाती हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत होता है।

दमदम एयरबोर्ड कलकत्ता से लिखते हैं बसंत कुमार सिन्हा और रेखा देवी शाह। लिखते हैं दिल से दोस्ती की जाए, ना कोई अमीरी ना गरीबी, सिर्फ ईमानदारी, दिल से दिल का रिश्ता बरसों तक निभाए जाते हैं। मैंने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। कलाकार हैं भगवान सिंह जोशी और साथी।

0: मम मूरख का अवमान नहीं,
1: मूरख का अवमान नहीं।
0: जो पांच नारियल पांच सुपारी,
1: पांच नारियल पांच सुपारी
0: और पांच हर

0: कैलाश बताऊं शिव तिस का करियो,
1: हे मणि बताऊं आगे बुद्धि बताऊं
0: दादा मणि बताऊं कैलाश बता दूं शिव तिस का करियो,
1: मणि बताऊं आगे बुद्धि बताऊं शिव तिस का करियो,
0: और जो कछु

ला सनकू और जाके बरना लखू कुमर को आ जाके बरना लखू कुमर को खुशी भई तुझकी तनकू।

0: अरे घोरा को समझायो ब्राह्मण,
1: घोरा को समझायो ब्राह्मण,
0: अरे खेलासन की धरन धरी,
1: खेलासन की धरन धरी,
0: अरे

0: अरे बम बम अरे अगर बम अरे बम बम अरे अगर बम अरे बम बम अरे बम भोला
1: बम बम अरे बम भोला
0: पापी पे पड़े गजब गोला
1: पापी पे पड़े गजब गोला
0: दाता को भलो करे भोला
1: दाता को भलो करे भोला
0: अरे अगर बम अरे धन गणेश
1: अगर बम अरे धन गणेश
0: भोले की पूजा करो हमें
1: भोले की पूजा करो हमें
0: बोल शंकर भगवान की
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आज के कलाकार हैं भगवान सिंह जोगी और साथी।

0: बड़े बड़े माँ थाली रूमे कहा करी मेरी भैया,
1: बड़े बड़े माँ

व्याकुल डंगरी में सूर भयो जब रोमत आम जसोदासी मैया। हे भगवान, आप काली देने गए हो, आप दर्शन दे हो, बाल बाल घिरने लगे,

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भगवान सिंह जोशी और साथियों के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में आपने भगवान सिंह जोगी और साथियों के सुर में कुछ ब्रज लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया

0: कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279807 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
6: आराम से मैडम।
5: क्या
6: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
7: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपसे कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। समय रहेगा दिन में 1:15। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे महिलाओं में पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए योग।

सुरक्षित मातृत्व और गर्भावस्था की देखभाल विषय पर भी आप चर्चा सुनेंगे। इसी कार्यक्रम में सुने काव्य पाठ योग और संस्कार डॉक्टर अनुराधा प्रिय दर्शनी से। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 1:45 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:10 पर। सभा के आरंभ में सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा। संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय। साथ ही चर्चा का विषय रहेगा योग अपनाएं स्वस्थ किसान बने। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता बागवानी वाली फसलों का महत्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:45। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज नव कथा सुबुद्धि। कहानीकार होंगे नरेंद्र आत्रेय। संध्या 7:31 पर श्याम सुहानी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुनिएगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। नवरंग कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में प्रीति तिवारी से भजन और श्री गोपाल अग्रवाल के स्वर में कुछ गजलें। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अतुल देसाई का ख्याल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: और आइए अब सुनिए कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं. ये हैं रवीना, पति का नाम राकेश कुमार, आयु 32 वर्ष, कद 5 फुट, बाल काले रंग गोरा है, पीली साड़ी और मेहंदी रंग की साड़ी पहने हुए हैं, पीली और मेहंदी रंग की साड़ी पहने हुए हैं. और ये अहोवा थाना सुरीर से लापता हैं. यदि इनके संदर्भ में आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है तो नजदीकी थाने सूचना दें. ये हैं राम नरेश, रंग गेहुआ है, 5 फुट कद है, उम्र 60 वर्ष है, आसमानी टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए ये मुरावन टोला थाना और आस उन्नाव से लापता हैं. यदि इनके संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप इसकी सूचना दें.

ये हैं काजल, उम्र 19 वर्ष है, कद 4 फुट 5 इंच, रंग सांवला, बाल काले हैं और कुर्ता सलवार पहने हुए हैं मटमैले रंग के। ये सुरीर कला थाना सुरीर जनपद से लापता हैं। यदि आपको इनके संदर्भ में कोई जानकारी मिलती है तो नजदीकी थाने में इसकी सूचना से अवगत कराएं। ये हैं करण सिंह, उम्र 58 वर्ष, कद 5 फुट, बाल काले सफेद हैं और सफेद रंग का कुर्ता पाजामा पहने हुए नगला बली कठेला थाना बलदेव से लापता हैं। यदि इनके संदर्भ में कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो नजदीकी थाने में सूचना दें। अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कुछ सूचनाएं। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब बहने सुनेगी कार्यक्रम वनिता लोक।

0: आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ है मीनू अग्रवाल।
1: आशा भले ही छोटी हो परंतु निराशा से बेहतर है। FM 102.2 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम वनिता लोक और आज मैं हूं आपके साथ मीनू अग्रवाल। माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत और भावनाओं से जुड़ा हुआ वो प्यारा सा एहसास है जो एक माँ की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है क्योंकि ये ममता धैर्य

और असीम प्रेम की एक नई यात्रा की शुरुआत करता है। मातृत्व सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऐसा सौभाग्य है जो जीवन को संपूर्णता देता है। जब एक महिला पहली बार अपने बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो उसके सारे कष्ट और दर्द गायब हो जाते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उसे बहुत सी परेशानियों से गुजरना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गर्भावस्था के बाद उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए इस दौरान उसे उचित देखभाल की जरूरत होती है। इसके लिए संतुलित आहार, नियमित जांच और मानसिक शांति बहुत जरूरी है। पहले 3 महीनों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर के संपर्क में रहें और किसी भी परेशानी को अनदेखा ना करें। इस अवस्था में आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे के विकास और वृद्धि पर पड़ता है, इसलिए संतुलित व पौष्टिक आहार ही लें, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो। पर्याप्त नींद लें, रात में कम से कम 5 घंटे की गहरी नींद लें और दिन में भी 1-2 घंटे आराम जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इस दौरान डॉक्टर से सलाह लेकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज व योग जरूर करें, क्योंकि ये प्रसव के समय होने वाले दर्द को कम करता है और उसमें होने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। इस समय कोई भी तनाव ना लेकर खुश रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें या हल्का संगीत सुनें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। थोड़ा बहुत समय अपने परिवार व दोस्तों के साथ बिताएं और ज्यादा देर एक जगह ही ना बैठे रहें। थोड़ी थोड़ी देर में टहलते रहें। आप एक्टिव रहेंगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। एक बात का खास ख्याल रखें, अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखेंगी तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ व हेल्थी रहेंगे। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह की देखभाल एक महिला को करनी चाहिए, जो कि इस दौरान जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी हमें अपनी कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक महिला अपने घर परिवार की जिम्मेदारी में इतनी डूब जाती है कि उसे अपना कोई ख्याल नहीं आता। ठीक है, घर परिवार व बाहर जॉब की जिम्मेदारी बखूबी निभाओ, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सोचिए, यदि आपकी हेल्थ ही खराब रहने लगी तो घर को कौन संभालेगा। इसलिए समय रहते अपने प्रति सजग हो जाएं। इस समय देखें तो महिलाओं में काम के बोझ के कारण पीठ दर्द और कमर दर्द की शिकायत ज्यादा रहती है, लेकिन काम के कारण इसे इग्नोर करती रहती हैं और जॉब पर भी जाती हैं तो वो एक जगह बैठे बैठे इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनकी पीठ में और कमर में दर्द होने लगता है। और कुछ नहीं, अपने आप को ही डॉक्टर बनाकर कोई ना कोई पेन किलर लेती रहती हैं, जिससे ये धीरे धीरे बढ़कर और ज्यादा परेशानी खड़ी कर देती है। आप चाहें तो घर पर ही रहकर थोड़ा टाइम निकालकर ऐसी परेशानियों को बिना दवा के ही ठीक कर सकती हैं, और वो माध्यम है योग। जी, योग ऐसी दवा है जो बिना साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचाता है। इसलिए पीठ दर्द और कमर दर्द को दूर करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए भुजंगासन, सेतुबंधासन, मर्जरी आसन, बालासन और कटिक चक्रासन बेहद असरदार योग हैं। ये आसन आपकी मांसपेशियों के तनाव को कम करके रीढ़ के लचीलेपन में सुधार करते हैं। इसलिए कैसे भी समय निकालकर योग आसन जरूर करें। इससे शरीर एक्टिव रहेगा, मन खुश रहेगा, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि योग अपनी बॉडी की सामर्थ्य के अनुसार ही करें। यदि पहले से डिस्क स्लिप आदि की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो और क्या चाहिए, योग करें, खुश रहें, जीवन को बेहतर बनाएं। कहा भी जाता है, करोगे योग तो रहोगे निरोग। तो ये तो थी हमारी चर्चा। अब इन चर्चाओं के बाद थोड़ा सा चलते हैं गीत संगीत की तरफ। कुछ इस तरह से, गुजरा वक्त दिल की दास्तान सुनाएगा, गुजरा वक्त दिल की दास्तान सुनाएगा, कभी साथ थे हम हर पल याद आएगा। गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, गौर से पलटना जिंदगी के पन्नों को, कहीं ना कहीं तो हमारा नाम नजर आएगा।

0: और आज जब हम आपसे योग की चर्चा कर ही रहे हैं तो आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ योग और संस्कार, प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शना।
1: माँ भारती की संस्कृति।

स्वस्थ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। थीम इस वर्ष की योग दिवस जानिए, थीम इस वर्ष की योग दिवस जानिए, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ साधिए।

पहचाना है, दुनिया ने अब पहचाना है, योग की शक्ति को सबने ही माना है, योग की शक्ति को सबने ही माना है। एक अन्य रचना सुनिएगा। जो थे यहाँ गुमनाम, जो थे यहाँ गुमनाम, मिला नया आयाम, लक्ष्य का हो संधान, कर लेना व्यायाम। जो थे यहाँ गुमनाम, मिला नया आयाम, लक्ष्य का हो संधान, कर लेना व्यायाम। दृढ़ प्रतिज्ञा मन धरना, तुम आगे बढ़ना, मंजिल निर्बाध मिलेगी, न हो कोई व्यवधान, मंजिल निर्बाध मिलेगी, न कोई व्यवधान। योग से स्वस्थ रहना अभ्यास तुम करना, तन और मन संतुलित हो जाता पावन। योग से स्वस्थ रहना अभ्यास तुम करना, तन और मन संतुलित हो जाना पावन। एक रचना जो है मैं बेटी पे आप सभी के समझ रखती हूँ। बेटियाँ क्यों पराई होती हैं, सुनिए। बेटा हो बेटी हो दोनों में अंश तुम्हारे हैं, बेटा हो बेटी हो दोनों में अंश तुम्हारे हैं, फिर भला बिटिया क्यों पराई होती है, फिर भला बिटिया क्यों पराई होती है। नौ माह गर्भ में बेटा बेटी दोनों रहते हैं, नौ माह गर्भ में बेटा बेटी दोनों रहते हैं, अंतर नहीं समझो, यह बेटी नहीं पराई है, यह बेटी नहीं पराई है। घर में जब भी बच्चे किलकारी गूंजे, घर में जब भी बच्चे की किलकारी गूंजे, नीरस जीवन में खुशियों की वर्षा होती है, नीरस जीवन में खुशियों की वर्षा होती है। ममता से परिपूर्ण वात्सल्य तरंग उछलती है, ममता से परिपूर्ण वात्सल्य तरंग उठती है, उस चरम आनंद की अनुभूति बेटी भी तो देती है, उस चरम आनंद की अनुभूति बेटी भी तो देती है। माँ पापा दादा दादी की बिटिया दुलारी, माँ पापा दादा दादी की बिटिया दुलारी, अपने मीठी बोली से बेटी सबको हर्षाती है, अपने मीठी बोली से बेटी सबको हर्षाती है। सुख दुख में साथ निभाती बन परछाई, सुख दुख में साथ निभाती बन परछाई, फिर बेटी भला क्यों पराई होती है, फिर बेटी भला क्यों पराई होती है। बेटी जग में माँ बाप का नाम अमर करती है, बेटी जग में माँ बाप का नाम अमर करती, सीता से ही आज जनक सबकी जुबान पर, सीता से ही आज जनक सबकी जुबान पर, भला कौन पूछता है सीता के भाई का नाम, भला कौन पूछता है सीता के भाई का नाम। सबके कुछ कर्तव्य

यहाँ पूरे कर जाना है, सबके कुछ कर्तव्य यहाँ पूरे कर जाना है। चार दिनों का जीवन भेदभाव के बीज न बो, बेटा हो या फिर बेटी दोनों को स्नेह लुटाना है। बेटा हो या बेटी दोनों को स्नेह लुटाना है। बच्चों के हृदय में ईश्वर स्वयं विराजित हैं, बच्चों के हृदय में ईश्वर स्वयं सदैव विराजित है। भेदभाव को छोड़कर बिटिया को अपनाना है, भेदभाव को छोड़कर बिटिया को अपनाना है। समझना जरूरी बिटिया नहीं पराई होती है, समझना जरूरी बिटिया नहीं पराई होती है। कुछ पंक्तियां और रखती हूँ। कठिन चुनौती भारी फूलों की क्यारी, चंदन बन महके आज की संतान। कठिन चुनौती भारी फूलों की क्यारी, चंदन बन महके आज की संतान। है सूचना का दौर मिलता नहीं ठौर, परंपरा से दूरी जड़ों से अनजान। है सूचना का दौर मिलता नहीं ठौर, परंपरा से दूरी जड़ों से अनजान। बच्चा बचपन खोता बस्ता भारी ढोता, मोबाइल में उलझा कब मिले संस्कार। बच्चा बचपन खोता बस्ता भारी ढोता, मोबाइल में उलझा कब मिले संस्कार। घर आंगन सब सिमटे नीम रसाल कटे, सांसें लेना मुश्किल रिश्तों में दरार। घर आंगन सब सिमटे नीम रसाल कटे, सांसें लेना मुश्किल रिश्तों में दरार। बचपन अब खोने लगा कैसा आया दौर, कच्ची मिट्टी के घड़े करना इस पर गौर। कच्ची मिट्टी के घड़े करना इस पर गौर, करना इस पर गौर मिलकर तुमसे सीखें। करना इस पर गौर मिलकर तुमसे सीखें। बच्चे खोजें नूतन चीजें दबे न चीखें, बच्चे खोजें नूतन चीजें दबे न चीखें। मस्ती उनकी कैसे दुबकी न रहे चटकन, मस्ती उनकी कैसे दुबकी न रहे चटकन। खेल खिलौना ले मृग छोना लौटा बचपन, खेल खिलौना ले मृग छोना लौटा बचपन। बचपन करे सैतानी मस्ती में दिन रात, तुतलाती बोली भाषा उसको समझे मात। बचपन करे सैतानी मस्ती में दिन रात, तुतलाती बोली भाषा समझे उनकी मात। समझे उनकी मात न चुटकी प्यार लुटाती, समझे उनकी मात न चुटकी प्यार लुटाती। थपकी देकर गोदी लेकर लाल सुलाती, थपकी देकर गोदी लेकर लाल सुलाती। मैया प्यारी सबसे न्यारी घर की धूरी, मैया प्यारी सबसे न्यारी घर की धूरी। हम बच्चों की दिल सच्चों की आंखें भूरी, हम बच्चों की दिल सच्चों की आंखें भूरी। अब कुछ पंक्तियां जो है प्रीतम के लिए रख रही हूँ, साजन के लिए सुनिएगा। ओ साजन परदेसी जल्दी आओ देश, ओ साजन परदेसी जल्दी आओ देश। तन्हाई तड़पाती है वहां न खुशियां लेस, तन्हाई तड़पाती है वहां न खुशियां लेस। वहां न खुशियां लेस न निधियां जैसी भारत, वहां न खुशियां लेस न निधियां जैसी भारत। प्रीत पुकारे हम तुम्हारे आओ रावत, प्रीत पुकारे हम तुम्हारे आओ रावत। मन क्यों भटके विदेश अटके तुम भरमाए, मन क्यों भटके विदेश अटके तुम भरमाए। छोड़ के अपने भूले सपने कब अपनाए, छोड़ के अपने भूले सपने कब अपनाए। तो कुछ पंक्तियां जो है मैं आप सभी के समझ संस्कार को लेकर के रखती हूँ, बहुत बातें होती हैं संस्कार की, तो देखिएगा। संस्कारी बनकर रहो जीवन सुखमय होए, संस्कारी बनकर रहो जीवन सुखमय होए। फल तुझको वो ही मिले जैसे दाना बोए, फल तुझको वो ही मिले जैसे दाना बोए। जैसे दाना होते बाना कब अनचाहा, जैसे दाना होते बाना कब अनचाहा। संस्कार धरो निष्कर्म करो मिले सराहा, संस्कार धरो निष्कर्म करो मिले सराहा। सुनिधि कहती धीरज धरती पांव पखारी, सुनिधि कहती धीरज धरती पांव पखारी। हंसकर टाले मन के छाले जो संस्कारी, हंसकर टाले मन के छाले जो संस्कारी। अपने भारत देश में पोषित है संस्कार, अपने भारत देश में पोषित है संस्कार। हमको इस पर गर्व है सभी धर्म का सार, हमको इस पर गर्व है सभी धर्म का सार। सभी धर्म का सार कर्म का दीपक जलना, सभी धर्म का सार कर्म का दीपक जलना। जो संस्कारी हो उपकारी रविसा तपना, जो संस्कारी हो उपकारी रविसा तपना। सुनिधि सुन लो खुद को गुन लो बन भंडारी, सुनिधि सुन लो खुद को गुन लो बन भंडारी।

खुशियां सारी सब पर भारी जो संस्कारी, खुशियां सारी सब पर भारी जो संस्कारी। कुछ पंक्तियां जो हैं प्रेम के लिए रखती हूँ। घायल मन उसने किया जिससे गहरी प्रीत, घायल मन उसने किया जिससे गहरी प्रीत। अंतर मन जब रो रहा कौन हरे यह पीर, अंतर मन जब रो रहा कौन हरे यह पीर। कौन हरे यह पीर धरे तह बहलाए मन, कौन हरे यह पीर धरे तह बहलाए मन। सुखमय जीवन लाए सावन थामे दामन, सुखमय जीवन लाए सावन थामे दामन। तन्हा हर पल मिल जाए हल महके उपवन, तन्हा हर पल मिल जाए हल महके उपवन। साथी अपना प्यारा सपना पुष्पित अकवन, साथी अपना प्यारा सपना पुष्पित उपवन। अर्पण तुझको देव है मान और अभिमान, अर्पण तुझको देव है मान और अभिमान। जैसे चाहे राख ले मैं तेरा प्रतिमान, जैसे चाहे राख ले मैं तेरा प्रतिमान। मैं तेरा प्रतिमान तेरे ही पीछे चलूं, मैं तेरा प्रतिमान तेरे ही पीछे चलूं। हाथ पकड़ ले आज, हाथ पकड़ ले आज, राह कहीं भूलूं नहीं, राह कहीं भटकूं नहीं। राधे की पुकार मुझको दिखा दे दर्पण, भटक रही संसार तन और मन सब अर्पण, भटक रही संसार तन मन सब अर्पण। एक और रचना सुनाती हूँ।

0: मंजूरी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना काव्य पाठ योग और संस्कार, प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर अनुराधा प्रियदर्शना। तो अब चलते चलते सुन लेते हैं एक और गीत। कोई चांद सितारा है, कोई फूलों से भी प्यारा है, कोई खुशी का इशारा है, कोई दिल का सहारा है, जो दूर रहकर भी हमारा है, वो नाम सिर्फ तुम्हारा है।

जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जी ऐसे ही प्रोग्राम लाकर हम आपका मन तो जीतते रहेंगे, लेकिन क्या करें, घड़ी ने इशारा कर दिया है, जाने का समय हो रहा है। तो मीनू अग्रवाल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संकेत।

गीत, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के। अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म घर से, इस गीत को अपने युगल स्वर दिए हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना फिल्म गुलामी का ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: ill at the Guadalajara Stadium, Mexico, to become the first country to qualify for the knockout round of 32 today. Following a tactical scoreless first half where clear chances were sparse, the decisive breakthrough arrived in the 50th minute. India's LNG tanker Disha has successfully arrived at the Dahej port in Gujarat after crossing the strategically important Strait of Hormuz. It is carrying 62,370 metric tons of liquefied natural gas from Qatar's Ras Laffan terminal. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country till tomorrow. IMD has also predicted thunderstorms accompanied by hailstorms at places over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Muzaffarabad and Uttarakhand today. The Met Department said heatwave conditions are very likely to prevail over Madhya Maharashtra, Marathwada, Telangana and Vidarbha till tomorrow and Uttar Pradesh till the 24th of this month. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया, पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक

0: कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत

0: देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का

0: सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन

0: विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका। श्रोताओं, एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है, इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय है, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहाँ ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धसाव की प्रक्रिया से वहाँ कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा

0: हमें क्या होता है।
1: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
0: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
0: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: जहाज पर नौकरी करता
0: है, जो रहस्यों और रोमांच से
2: करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
0: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और आकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है, कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे, बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है।
3: आज का हमारा,
2: जब मेरी नींद खुली
3: होता है तो अपने मित्र
0: और रमेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
0: थोड़ा सा कंबल था,
2: कि कोई चीज
0: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर।
0: और रमेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। पांच को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश

ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी न बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत

की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थानों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले।

मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने किया तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।

0: और तू है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
1: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
2: CFC है मेरा नाम, ओजोन

0: PFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
1: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ओह, ये सपना था। पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:10 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: इंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it will be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
2: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
3: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज़ एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इन फैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
2: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
3: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. Hmm. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then

0: Transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is a universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: में आती है. People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But our Prime Minister has given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है, बिल्कुल फायदा है, और आर्थिक विकास में विनिम्र क्षेत्र की महत्व

0: महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: The Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is Job Fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: That's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment, none of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. silence is being maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one more thing, ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All.

0: which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is social security for all.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: And I'm really eager to see our Prime Minister come and press that button, you know, the money will go to 15 lakh people into their accounts. And they'll be getting the letters. And it's going to be a wonderful experience. Preeti, in fact, I've never seen something like this, you know. Just at the press of a button, 15 lakh people, beneficiaries, get the employment letter. India's also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू द फोन.

0: that they have got their letter.
1: An amount will be transferred. और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है. और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our Prime Minister has given this job to me. So and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और

0: नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through, and because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they are financially independent, and very soon our Prime Minister will be coming in, and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know, and you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you have got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you, and He will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़

0: जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them, and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
0: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
1: Yes.
0: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
1: Yeah.
0: है ना?
1: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today they'll be, it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And the Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
0: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई. कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं,
1: yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
1: So in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know. And it's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
1: Yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
1: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम

0: एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का
1: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
0: मैं मन्नत भाटिया
1: और मैं जयवर्धन गोयल,
0: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत।
2: The Prime Minister has arrived. He has taken his seat on the desk.
0: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
1: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
1: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks.
1: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: By Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले।

उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए, मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया

0: सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control.

0: के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
1: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
1: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
0: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
1: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
0: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब का भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के

सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है। और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है। और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता था ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे,

आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़
33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता ने

करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी

यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित है। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया

भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं। क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है।

0: एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करें और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रयू? और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
5: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं दिलीप कुमार यादव।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनबे बारे किसान भैया बहनन को दिलीप यादव की राम राम। किसान भैया, आज हम चर्चा कर रहे हैं खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के उपायन पे। निश्चित रूप से मिट्टी बहुत जरूरी है और मिट्टी की सेहत वाउते ज़्यादा जरूरी है। हमारे किसान भैया यह मामले में थोड़े से पिछड़े भए हैं, क्योंकि मिट्टी की सेहत अगर ठीक नहीं होगी तो हमारी जो फसल है वह में रोग संक्रमण की संभावना रहेगी, उत्पादन की गुणवत्ता खराब होगी और या के संग संग उपज हो हमें कम मिलेगी। तो किसान भैया, मिट्टी की सेहत सुधारने को जो समय है वह मैं देखूँ गर्मी को समय यानी गेहूं की कटाई के बाद को जो समय है वह में आप सब लोग ढेंचा दाल की फसल, चाहे वो मूंग हो या उड़द हो, सनई की खेती, इन सब खेती इनको करें हैं और इनके जो पत्ता हैं वो खेत में झड़ें और जड़न में नाइट्रोजन को अवशोषण करवे वाली जो गांठ हैं उनमें अगली फसल के काजे नाइट्रोजन को संचय होए। बहुत से भैया हरी खाद के रूप में ढेंचा की खेती करे हैं, 2 महीना को हेवे के बाद बाकू खेत में पलट दे में हैं और या से

0: हमारी मिट्टी की सेहत सुधरे है। ब्रज में गौशाला बहुत हैं और हमारी ये ज़रूरत है कि हम कम से कम 3 साल में एक बार, ट्रॉली नहीं कम से कम एक ट्रोला या दो ट्रोला को बीघो हर खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और खाद डाल के बाकी सुखा में नहीं संगी संग जुताई में मिला के और ऊपर से अगर पानी मिल जाए तो पानी भर देवें। या से हमारी जो पोषक तत्व को अवशोषित करने वाले बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया मिट्टी में घुल मिल जाएं। और ये बैक्टीरिया ही हैं, चाहे आप रासायनिक खाद में DAP डालो, यूरिया डालो, जिंक डालो, पोषक तत्वों को डालो, सबको पौधा को पहुँचाए हुए को काम भी बैक्टीरिया ही करें। तो हमें मिट्टी की सेहत सुधारने के काजे खेत में बैक्टीरिया पैदा करने हैं और बैक्टीरिया पैदा करने के काजे हमें जो प्राकृतिक तरीका है खाद के, चाहे वो हरी खाद हो, गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट खाद हो, जीवामृत हो, घन जीवामृत हो, इन सबको प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये चर्चा रही खेत की मिट्टी की सेहत सुधारने के उपाय विषय पे। अब सुनवा रहे हैं आपको एक भेंट वार्ता बागवानी वाली फसलों का महत्व विषय पे। ये वार्ता है और वार्ताकार हैं डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भरतपुर। इनसे भेंट करी है OP सिंह ने।
1: सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत। राम राम।
2: राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी, तो खेत बचाओ अभियान जो 1 जून से और 30 जून के बीच में भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक महत्वपूर्ण अभियान है और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, चाहे मिट्टी पानी की जांच हो, चाहे खेत के स्वास्थ्य की बात हो, तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी अभियान से हर वर्ष हमारे किसान भाइयों तक वो चीज लेके जा रहे हैं उनके द्वार तक, जो हमारे वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशालाओं में उनके लिए तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं, जानकारी तैयार करते हैं और डिमोन्स्ट्रेशन करके ये बता रहे हैं कि ऐसे अगर उपयोग करोगे तो न सिर्फ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, आपकी आय भी बढ़ेगी, संसाधन भी बढ़ेंगे और प्राकृतिक जो हमारी एक बैलेंस है वो भी बना रहेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान के बारे में, थोड़ा सा बता रहे हैं।
2: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
2: मैं पहले तो भारत के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान दिया। मुझे ध्यान है कि शायद 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री गंगानगर राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत की थी
1: जी।
2: मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो हमारी खेतीबाड़ी के लिए और जमीन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने का आशय सिर्फ यही था कि आज जो खेती बचाओ अभियान हम शुरू कर रहे हैं या जो किया जा रहा है, इसमें कई बार हमें लोगों ने कहा कि साहब खेती हमारी कहीं उड़के चली गई क्या, कोई ले गया क्या इसको। तो हमने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा जो खेती हमारी जो हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी खादों से या रासायनिक खादों से बंजर होती जा रही है, उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ बनाएं उसको। तो वास्तविकता कई बार हम जब गहन चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि अंग्रेजी जो खाद है या रासायनिक खाद है उनसे जमीन बंजर नहीं हुई, दरअसल उनके गलत उपयोग से बंजर हुई है जमीन।
1: बिल्कुल सर जी जी।
2: कि अब देसी एक उदाहरण करें कि एक व्यक्ति जो 4 रोटी खाता है उसको अब 8 रोटी रोज खिलाएं तो क्या होगा, विकार पैदा होगा
1: जी।
2: और 4 रोटी की जगह 2 रोटी खिलाएं तो भी जो है वो परेशानी होगी। तो इंसान तो क्योंकि जानता है तो वो बता देता है कि मेरी भूख कितनी है, जमीन तो बोल नहीं सकती।
1: सही बात।
2: तो उसकी भूख कितनी है इसके लिए बहुत आवश्यक है कि मिट्टी की हम जांच कराएं और उसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने
1: जी जी।
2: क्योंकि हर जिले के लिए, हर जिले की आवश्यकता अलग होती है, पानी अलग है, मिट्टी अलग है, वहां की जलवायु अलग है। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है कृषि विभाग हर जगह जो है पंचायत समिति स्तर पर बैठते रहे, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी फील्डों में भी जाते हैं, एक बार कृषि विभाग से संपर्क करके मथुरा जिले के लिए जिन किस्मों की सिफारिश की गई है उन किस्मों का अगर उपयोग करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। तो एक बार आप कृषि विभाग से संपर्क करें
1: जी,
2: वो आप जो है
1: यहाँ के लिए जो सिफारिश है उनको उपयोग,
2: उनको मथुरा जिले के लिए जो सिफारिश है उनका उपयोग करेंगे, उनका करेंगे तो ज्यादा मैं समझता हूँ बेहतर परिणाम मिलेंगे।
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, मिट्टी पानी की जांच के माध्यम से इस मिट्टी के स्वास्थ्य को बचाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने।

0: बिना मिट्टी की जांच किए जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया वो अंदाजे से किया
1: जी।
0: अब वो जो जमीन की भूख है उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके जो दुष्परिणाम हुए उसकी वजह से हमारी जमीन बंजर हुई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अब ये जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 1 जून से 30 जून तक खेती बचाओ अभियान चल रहा है, इसमें यही जो है जागरूकता के लिए है कि हम अपनी मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच के बाद फिर जो है वो हम खाद का इस्तेमाल करें
1: जी।
0: और आप जो है कृषि विभाग में अपने जो नंबर हैं हमारे उन नंबरों पे एक बार वीडियो कॉल करके इसको पौधे की एक छोटी सी या तो वीडियो बना के भेजें या वीडियो कॉल करके उनको दिखाएं कि साहब हमारी ये समस्या है। जैसे फसल पीली पड़ती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, दीमक लग रही है उससे भी पीली पड़ जाती है, यूरिया की कमी है वो भी उससे, कई बार जिंक की कमी होती है उससे भी पीली पड़ जाती है, कोई बीमारी लग रही है उससे भी पीली पड़ जाती है। तो अगर हम उसको देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर हम इलाज बता पाएंगे। अंदाजे से बताने पर कई बार क्या है कि नुकसान आपका हो जाएगा, मैं तो कोई बात नहीं है जवाब दे दूंगा आपका, आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे, फसल आपकी चली जाएगी।
1: तो पुरानी एक कहावत भी है ब्रज की, संदेशों खेती नहीं होती। तो आप संदेशों तो यहां से ले रहे हैं, जानकारी ले, लेकिन इस जानकारी को उपयोग में लाने के लिए जो साधन है आजकल के उनको उपयोग में लाएं।
0: तो सर्दियों के दिनों में हम बाजरा की फसल या मक्का की फसल या ज्वार की फसल नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से गर्मियों में बरसात में हम गेहूं जौ चना सरसों की फसल नहीं ले सकते हैं। तो सर्दी जो है उससे आपको सर्दी से तुलसी के पौधे का बचाव करना पड़ेगा, या तो उसको आप पर कपड़ा उस पर ओढ़ाएं या उसको छाया में रखें या ऐसी जगह रखें, क्योंकि तुलसी जो है वो कम तापक्रम में जीवित नहीं रह पाती है। तो उसको कम, आपने देखा होगा कि पाला पड़ जाता है तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो कम तापक्रम जब होगा तो तुलसी जो है वो मर जाएगी। उससे बचाने के लिए हमें या तो उसको ढकना पड़ेगा, कपड़ा ओढ़ाना पड़ेगा, या फिर उसको हमें जो है वो छाया में रखना पड़ेगा, छत के नीचे रखना पड़ेगा।
1: जब गिरता है तापमान तो फिर तुलसी को परेशानी होती है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है अधिक या असंतुलित खाद देने से खराब हुई है उसमें। किसान भैया जो आपने जैसे रोटी के माध्यम से बात बताई कि भूख जितनी है उतनी खाओगे तो ठीक है, कम में से भी परेशानी होगी,
0: ज्यादा से भी परेशानी,
1: आपका हजमा खराब हो जाएगा। तो क्या इसी स्तर पे जानकारी लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने ये समझ लिया कि हमारे जो परंपरागत तरीके थे शायद आज उनकी जरूरत नहीं है और हम डीएपी और यूरिया डालते रहेंगे तो हमारी काम पूरा हो जाएगा?
0: ये इसी जो हमारे किसान भाइयों की जो ये सोच है, मैं ये महसूस करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसी को ध्यान में रखते हुए 1 जून से 30 जून तक ये खेत बचाओ अभियान शुरू किया है। इसमें हमें जो सबसे हमारी प्राथमिकता है वो किसानों के अंदर जागरूकता लाना है कि जो हमारी मृदा की उर्वरता है, मृदा का स्वास्थ्य है, उसको हम कैसे संरक्षित करें, कैसे सुरक्षित रखें। तो एक बार जब मिट्टी की जांच हो जाती है तो मिट्टी की जांच के आधार पर, जैसे हमारे पुराने आप देखेंगे कृषि विभाग की जितनी भी सिफारिशें हैं उन सभी सिफारिशों में सबसे पहली सिफारिश जो पोषक तत्वों की और उनकी खाद की है कि 20 से 30 गाड़ी हम प्रति हेक्टर में गोबर की सड़ी हुई खाद डालें।
1: तो क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो किसान भैयाओं को इस समय करने चाहिए?
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और ये इस समय देश की बड़ी ज्वलंत समस्या है और आवश्यकता भी है। इसके लिए मैं हमेशा से कहता आया हूं किसान भाइयों को अपनी 35 साल की नौकरी में कि जो पुराने हमारे अच्छे तरीके हैं, पुरानी हमारी परंपरागत अच्छी विधियां हैं, उनको अपनाएं और साथ ही जो आधुनिक नई तकनीक आ रही है उसमें जो हमारी अच्छी चीजें हैं उन दोनों का आपस में तालमेल बिठाएं। तो जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था कि कोई भी फसल लें उसमें सबसे पहले 20 से 30 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद हम उसमें डालें।
1: जी जी जी।
0: उसके बाद में फिर नाइट्रोजन फास्फोरस की जो आवश्यकता है उसको पूरा करें। तो अपने पास में सड़ी गोबर की खाद हो सकती है, बर्मी कंपोस्ट हो सकती है, कंपोस्ट जिसमें सुपर कंपोस्ट, नेटिव कंपोस्ट वो भी हो सकती है, हड्डियों की जो है खाद हो सकती है, हरी खाद हो सकती है, पोल्ट्री की खाद हो सकती है। तो ये इनमें से कोई भी अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो हम करें। इसके अलावा एक और जो है वो बायो फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, जैव उर्वरक जो बोलते हैं, उनका काम है कि जो हमने फसलों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में जो डीएपी, यूरिया और सुपर फास्फेट, विशेष रूप से फास्फोरस और पोटासिक जो उर्वरक हैं वो आवश्यकता से अधिक जब चले जाते हैं तो वो जमीन में एक तरह से पत्थर बन जाते हैं, जम जाते हैं। तो ये बायो फर्टिलाइजर जो है इनके खुद के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप इनको प्रयोग करेंगे बीज उपचार के साथ में तो वो जो जमी हुई फास्फोरस है, जमी हुई पोटास है, उसको घुलनशील अवस्था में और उपलब्धता वाली स्थिति में लाते हैं तो फसलें उनको लेने की स्थिति में आ जाती हैं।
1: आप आए, हमसे जुड़े, जानकारी दी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में थे योगेश कुमार शर्मा जी, संयुक्त निदेशक हॉर्टिकल्चर भरतपुर संभाग। मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं और श्रोताओं से अपने किसान

0: भैयाओं से विदा लेता हूँ। राम राम।
1: राम राम सब।
2: तो किसान भैया, बागवानी फसलन पे डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा दे रहे जानकारी और इनसे भेंट करी ओपी सिंह ने। चलते चलते योग अपनाएं, स्वस्थ किसान बने। तो निश्चित रूप से योग दिवस के अवसर पर किसान भैया, फावड़ो तो आप चलाई हो लेकिन योग को अपना महत्व है। निश्चित रूप से योग दिवस पर आप सब लोग योग को अपनावे को संकल्प लेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर आप सब होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दिलीप यादव ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

त्रिमूर्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार राठौड़ और अलका याग्निक के सुरों में ये भक्ति रचना। रचनाकार थे आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की युगल सुरों में। काला बाजार फिल्म का नाम है, शैलेंद्र की रचना, एस टी बर्मन का संगीत निर्देशन।

गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे काला बाजार फिल्म से शैलेंद्र की ये भक्ति रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत निर्देशन था। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त, क्षमा करें मोहम्मद रफी के स्वर में गोपी फिल्म से रजिंदर कृष्ण का लिखा हुआ ये भजन, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गोपी फिल्म से राजेंद्र कृष्ण की ये भक्ति रचना कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन था। इसी के साथ ही संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। ब्रज साहित्य

0: कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रज नवकथा आइए आपको सुनवाते हैं। शीर्षक है सद्बुद्धि, कहानीकार हैं नरेंद्र आत्रेय।
1: हाँ जी जग्गो भैया, तैयार रह जाओ दावत के ताई। हरपाल ने पीछे से हाँक लगाई। आवाज पहचान के मैंने पीछे मुड़ के पूछी, ऐसी का खबर हाथ लग गई भैया? वो बोलो जाको मतलब जी है कि जे खबर अभी तुम तक पहुंची ना है। बंसी के छोरा होलट के रात को पांचवी छोरी और आई गई है। अरे भैया तू का कहे? अरे मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें भाई, गजब है गयो। हरपाल बोलो तुम का कहोगे, मार उधम मच रहे हो। बंसी की बहू तो वह छोरा की बहू है, रात से ही गारी देवे में लग रही है। जाने कुल को कुल डुबाए दीनो, छोरा को मुंह न दिखो आज तक और छोरीन के ढींगे लगाए दीने। मैंने कही भाई बात तो बहुत दुख की है, छह छोरी तो खुद बंसी पे पहले से ही हैं, भाई तो सात ही एक जाती रही। तब जाए के जे आठवों होलट भयो और होलट के एक सल्ला पांच छोरी है गई। बताओ हमें तो ऐसे बताइए कि अब के तो वो बबुए गंगा जी नहवा लाई और कोई 4,000 की गाड़ी करके सबरो कुंबा देवी देवारे ने ढोके आयो। बाकी सासू गांव भर में गादी डोल ली कि अब के तो बहू की रूहानी बिल्कुल बगदी भइए, कछु और ही ढंग की अच्छी छप मार रही है। अब के तो सौ इससे छोरा ही होएगो। वो सुखनारायण पंडित जी तो जाकी तीसरी छोरी के बखत से ही हल्ला मचाए रही के पांचों बच्चा जाको छोरा ही होएगो, सभी फेले गई एकदम ते। हरपाल बोलो का खबर है साहब, हमन तो न्यो सुनिए कि दाई ने ऐसी बताई कही है कि जा बहू के तो छोरा ही सके ना है, जाकी तो बनगति और तनिया की है, इलाज फैला से कोई नतीजा निकरवे वारो ना है। सो बंसी की बहू तो न्यो कह रही कि हम तो जा होलट को दूसरा ब्याह करेंगे। बहू को तो रोते रोते बुरो हाल है, बाने अभी तक चाय तक भी ना पिए, छोरी बाने एक लंकू डाल रखी है। मैंने कही भाई बड़ी परेशानी है। हरपाल बोलो और मैं बताऊं तुम्हें, बंसी तो उनक धर्म लगती बात कह रहे हो कि जा में बहू को का खोट है, हिम्मत राखो भगवान से भली करेंगे। सो भैया मैया और बेटा दो बापे घोगाए घोगाए के पड़ रहे हैं, बाकी सुन कौन रहे हो। जे दोनों बात हम दोनों जब बात करवे लग रही तभी तो सामने से बंसी आतो दिख गयो, बिखरे बिखराए बाल बेधोबो मोड़ो कहीं के पाम कहीं पड़ रहे। हरपाल बोलो को भैया आज ये भगुड़े भगुड़े से कैसे है रहे हो? वो नाक सुलगते और सूजी से पलकन को ऊपर चढ़ाते हुए बोलो, तुम दो शिव जी के गण हो तुम्हें सब खबर है भाई, बड़ी कमबख्ती है। रात 2:34 पे एक कन्या घर में और आई गई। कहाँ तक आदमी हौसला बांधे, छह तो भुगाए पांच भतीजी आई गई, अभी तीन भुगान के ही तो ब्याह भई है, बिन के ही मारे कमन नोहरी जाए, जो कोई आसान काम थोड़ी है। अब तुम जो मान लियो कि पहले तो घर घर डोलो, जने जने के निहोरे पाते करो, पूरा सूरो पैसा लगाओ, हाड़ पेलो, सो काऊ के मंत्र आयो के नहीं आयो, फिर ब्याह करके थोड़ी पीछे छूट जाए। काऊ के तैया ससुर को फालेज मार गए हो, काऊ के ननिया सास को ऑपरेशन है, काऊ के जेठानी की छोरी को ब्याह है, सब में कार्य कोसन भगे चले जाओ लियो दे। और हमारे तो 24 घंटा बार त्योहार रहे, हर वक्त सबको अच्छो ही अच्छो चाहिए, ऐसी वैसी चीज की तरफ तो कोई मोह करके ना देखे। और महंगाई को जी हाल है को रुपयान की गिनती गिनती रह गई है, चीज कछु हाथ में आवे ही ना है। हर वक्त नो खाए तेरे की भूख लगी रहे, 2 साल में 3 साल में कसम साए के पेट काट के जो कछु जोड़ो जखोड़ो एक ब्याह में सब साफ है जाए। और फिंजो की तो सांप सीढ़ी के खेल में एक लंबो सो सांप बनो रे, बाको मोहर है 99 नंबर पे और पूछ रहे 3 पे, एक एक दाव चल के धीरे धीरे अपनी गोटे 100 नंबर की तरफ ले जाओ लाल करवे को। 99वें नंबर पे वो सांप डस ले और 3 पे उतार दे, अब फिर सर को एक एक दाव करके धीरे धीरे, और काऊ बिरिया ऐसो न है जाए कि सांप शपथ तो ही खाए जाए। हरपाल जो बहुत देर से अपनी हंसी रोके रहे हो, अब कह तो बाकी हंसी फूट गई, खूब जोर से हंसो, सवरो बाको पेट हिल गयो। बोलो देखो बंसी, जब तुम्हारे दूसरी जन तीसरी छोरी भई काई तभी मैंने कही कि अब ज्यादा चक्कर मत पड़ो, मान लियो कि तुम्हारी छोरा के बगैर ना निठ रही तो कहू छोरा गोद ले लियो, छोरान की कोई कमी थोड़ी है संसार में, जाए मान

0: ले और सोई अपनो है, पर तुम तो एकदम से उखड़ गए। तो जिन बातन ने रिंदो अपनो खून अपनो ही खून हो गए, तुमने मानी कब? जो ही गलती तो तुमने अपनी बखत करी और सोई गलती तुम अब जा होलट की बखत कर रही हो। जा आदमी को काम बिगड़ जाए काए, वाय सहानुभूति और हिमलास बंधाए हुए बारी बात तो लगे अच्छी और उपदेश लगे जहर, फिर भी जहर को जैसे तैसे हलक से नीचे उतार के बंसी बोलो भैया तू न कहो जिन बातन ने तो का मैं कहूंगो, भगवान ने तो बखत दियो कहवे को, तुम्हारे तो एक नार आठ छोरा है गए, छोरी की छाया उनाए। हरपाल ने कियो पलटवार, तुमने तो लप से कह दई, तुम्हारी समझ में हमारी मुसीबत आई ना सके। देखो पहलो टीको तो काउ दिन कोई ना है, हर वक्त बीमार धरो रे, बासे दो छोटी हैं उन्हें पहलवानी को गरू रे, दोनों जोड़ा से निकले शिकार करवे को, हर वक्त बिन की दूर दूर से औजरे इनकी शिकायत आती रहे, और जो छोटे छोटे हैं उन्हें जाने कौन ने सिखा दिनो है, सो वो दिन भर हिस्सा बांट की बात करती रहे, उन्हें घर में हर चीज के 24 घंटा हिस्सा बांट चाहिए, वो अभी से ही लड़ लड़ के मरे जाए। मैया जो कहे कि जिन छोरान को जन्मे में मेरा सबरा शरीर छीज गयो, अब मुँह पे घर को कोई काम ना हुए, जिन मरे डूढ़न से तो एक आध छोरी सी है जाती तो नेक हाथ सहारो तो है जातो, घड़ी दो घड़ी नेक कमर सीधी कर लेती। और बताऊं हम सब लोग कहवे कि होंदे भैया हिटकाओ मती, 8-10 पहचान के नाती नवासी होंगे, और मान लो गांव में कोई बात है गई तो एक घर में ऐसे ही तुम्हारे पीछे 100 लठिया निकल आएंगी, और जाके पीछे लठिया ना उठें बाकी फिर अगाड़ी लठिया उठ जाए। बावखत जे दिमाग में नहीं बैठी कि जो कुपत्ते जब लठिया हमारी खोपड़ी पे तान देंगे तब कैसी होगी। तो भैया शांति तो न छोरान से और न छोरीन से। मैंने कही भैया हरपाल मेरे दिमाग में तेजी बात बैठ तो रहेंगे। देखो मैं बताऊं, एक दफा बहुत पहले की बात है, तो कोई 20 साल है गई, यहाँ पे एक SPI पुलिस में राणा साहब है जे लंबे तड़ंगे गोरे चिट्टे, बिनकी मैम साहब ऊंचे खानदान की, सो भैया बिनके पहलो ठीक की छोरी भई, सबरी पुलिस लाइन में बड़ी खुशी मनाई गई, खूब आतिशबाजी छूटी, रोशनी भई मिठाई बटी, दोनों मर्द भैया व छोरी को हाथन पे ही रखते, नो मानो के जैसे सीप के दो पलान के बीच में मोती। अब जैसे ही वो छोरी भाई का 2 साल की, सो SP साहब ने अपनो ऑपरेशन करवा लीनो, फिर बिन के कोई बालक न भयो। अब जाने सुनी सोई ताज्जुब करे, अरे एक छोरा सो और है जातो, और मानो 4-6 है जाते तो जिनका काय बात की कमी, पर अब तो जो भयो सो भयो, बिन को अपनो रहवे सहवे को ढंग, बिन ने वह छोरी की खूब लिखाई पढ़ाई करवाई, बड़ी होशियार निकली, जहां गई मई बाने बाप को नाम ऊंचो करो, फिर वो कलकत्ता में बहुत ऊंचे ओहदे पे हे एक सज्जन बिन को ब्याई गई। अब सुनो बात, छोरी के भय 2 छोरा, सो एक तो बहुत नामी वकील भयो और एक भयो डॉक्टर, दोनों ने अथान दौलत कमाई डारी, पर SP साहब को काऊ बात की जरूरत नहीं, वो अपनी नाक पे मक्खी ना बैठन देते। बिन ने रिटायर हैवे के बाद दिल्ली में शानदार बंगला बनवा लीनो, खाए पिए की दे बेफिक्री को जीवन, बुढ़ापे तक वो ऐसे रहे बिल्कुल तने भई। पर बिन की जो बेटी ही ना, वो नेक पत्ता हिलते ही अपने बच्चान को हवाई जहाज से दिल्ली दौड़ा देती, वो नाना नानी के हुक्म में हाथ जोड़े खड़े रहते, बेटी अपने मैया बापन को वैसे ही ध्यान रखे ही जैसे बिन ने बा को धरो का। सो भैया हरपाल तू कह तो ठीक ही रहो, सुख शांति तो न बेटी से न बेटा से, सुख तो अच्छी बुद्धि और कर्मन किए, जे अतको मरो फौज फट्टा तो बहुत ही बुरो।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज नव कथा, शीर्षक था सद्बुद्धि, कथाकार थे नरेंद्र आत्रे। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आज रात्रि 9:15 से आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम नवरंग।

श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 22 जून को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में सहभागिता निभा सकते हैं। टेलीफोन करने से पूर्व मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। यदि आप मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक दोष, ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों का सफेद हिस्सा लाल हो जाना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से। कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 22 जून 2026 समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की

0: 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात, कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल, वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें ना हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास

0: परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़िया ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
1: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच

एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एसआईटी की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: हम आकाशवाणी
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। श्रोतो, शाम का ये समय अपने साथ लेकर आता है सुकून के कुछ पल, यादों की कुछ खुशबू और संगीत के मधुर सरगम। इन्हीं सुरों को और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपकी पसंद के वे फिल्मी गीत जिनकी फरमाइश आपने हमें अपने व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से भेजी है। देश के विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों से जुड़े हमारे प्रिय श्रोताओं ने अपने संदेशों के साथ अपनी भावनाएं, शुभकामनाएं और गीतों की पसंद हम तक पहुंचाई है। आने वाले आधे घंटे में हम पढ़ेंगे आपके संदेश और सुनवाएंगे आपकी पसंद के चुनिंदा फिल्में गीत। तो आइए इस सुहानी शाम को संगीत के रंगों से सजाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के पहले फरमाइशी गीत से।

लता मंगेशकर और कमल बड़ौत की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे असद भोपाली का लिखा हुआ ये प्यारा सा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म थी पारस मणि। और इस गीत को सुनने के लिए बहुत सारी संदेह फरमाइशें मिले हैं। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश में मिला है। आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत अरमोल, पवनीत, निखिल भाटिया, नीति और मेहरिन भाटिया। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, देवांकन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशान। दत्रेकी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखे लाल वर्मा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, ऐशा सबीहाना, सुरेहान खान। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी, प्रियाली हागोड़े और पार्थ हागोड़े। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती और ओम कुमार सुरलकर का संदेश। सिरसा हरियाणा से हमें सुन रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और आदि। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नवानकर और तुषार करंगले। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। जाफराबाद से सुधाकर राजी जाधव, प्रशांत राजी जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश सर्वत, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख। बिजनौर से मोहम्मद वक्कर फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक जालंधर से। पंजाब से जुड़े हैं अनारकली बाजार से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से

रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का संदेश हमें मिला है। श्रोताओं, संगीत वो भाषा है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और जब उसमें श्रोताओं की पसंद शामिल हो जाए तो हर धुन दिल के और करीब पहुंच जाती है।

शैलेंद्र सिंह की आवाज थी तरन फिल्म के लिए। राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अभी आपने ये गीत सुना। बागपत से संजय ढिंगिया नमन और अपार ढिंगिया का संदेश में मिला है। नांदेड़ से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत सागर कटक से, विशाल कवली, सोनाली, समर्पण और भक्ति कवली। गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, विपिन, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। दुर्गा कॉलो

अपनी हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू टप्पू, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया, फरूख आबादी, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर का संदेश मिला है, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, मलकापुर से संजय पाटिल, उषा, निवृत्ति, शीर सागर और संजय चौहान, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र सेन, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान फरहान और समायरा, ललितपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति और इनके ढेर सारे साथीगण, उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसितासु, अर्णव और सत्यम, मुन्ना और गुट्टी भगत, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी और तानिया, मगरलोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश, पलारी छत्तीसगढ़ से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा का संदेश, अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अकलम अकमल, मोहम्मद अफजल, नफीसा प्रवीण, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना, निवान शर्मा, बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल, बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय, वर्णिंग खेंडा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, मधुबनी एक्सटेंशन कुशेश्वर से कुशेश्वर कांति गुप्ता, फूलो राणा, अजय राणा, ज्योति, विजय, श्वेता, स्वर्णिमा, विजेंद्र, सुशांत, शोभा और रामचंद्र गुप्ता, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा, गांधी नगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल, निशा, वनस्थलीपुरम हैदराबाद से दूरनाला बालाजी, रेणुका, बत्री, हरणी, लोकेश और वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरेशे, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रॉजी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो, विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी और जमीन भावसार। श्रोताओ, कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी किसी अपने की आवाज बनकर गीत हमारे जीवन में आते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत, बहुत चंचल सा गीत है, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, आजाद फिल्म के लिए शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, सी रामचंद्र का संगीत निर्देशन।

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे आजाद फिल्म का गीत। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा श्रव्य रामटेके का संदेश मिला है। कुरावले से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, क्षमा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज और मुस्कान। लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी और निशांत। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार। पंजाब के श्रोता हैं तरन तारण से, इन्होंने संदेश भेजा है। गुरुदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और गुरुशब्द। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। सीताराम कांगड़ा, बबीता, निखिल तन्वी और अंकित रोहतक हरियाणा से। रज्जक मोहम्मद, शमीम और इनके साथीगण हनुमानगढ़ राजस्थान से।

गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार सिंह और रिंकी शेखावत का संदेश हमें मिला है। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जय श्री अलोट रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नाइमा रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ नांदेड़ से प्रकाश जैन लातूर से संगीता सूरज जैन और पी आर जैन अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी गुलनाज हाशमी असद अरहम और इनके परिवारीजन मिला छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव और गरिमा शर्मा यवतमाल से राहुल मनवर सरला चेतन रोशनी और प्रियांशी मनवर। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में बागी फिल्म से।

0: अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में बागी फिल्म का गीत आपने सुना और इसी के साथ शाम सुहानी प्रोग्राम से मुझे यानी अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो

0: विश्व में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाए, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया, हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व

0: का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माउस तकरीबन खत्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब ये चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई

0: जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम

0: हम जो ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट है, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोलर अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा, और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक

0: इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाईयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद अब सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढील पना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाई रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी

0: रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है। चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें, तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम

0: महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं, वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं, जो हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए, जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे, वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु, आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
4: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
5: आराम से मैडम।
4: क्या?
5: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
6: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: हम आकाशवाणी की मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देश कौन।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद सुरों में ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देशभर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना ईकेवाईसी और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से केवीके कृषि विश्वविद्यालय आईसीएआर के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेट

0: अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
4: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
3: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
5: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
1: दिस इज द कंट्री,
2: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. एंड नाउ द

नवरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप इस कार्यक्रम से पत्र के माध्यम से और व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगले सप्ताह के नवरंग कार्यक्रम में आपकी सहभागिता हो, इसके लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं। और हमारा पता है कार्यक्रम नवरंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र मथुरा उत्तर प्रदेश, पिन कोड 281003।

जो श्रोता साथी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजना चाहते हैं वो कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व 15 मिनट पूर्व आप हमें संदेश भेज सकते हैं। संदेश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनुराधा पटवाल और उदित नारायण की आवाजों में कुर्बान फिल्म का ये गीत।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में कुर्बान फिल्म का गीत, गीतकार थे समीर और आनंद मिलिंद का संगीत निर्देशन था। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजाम, साइमा नवाज, हसन अहद और मिफ्रा बेबी चाहत, रंगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का संदेश, बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से रोशल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल किरण और कपिल कुणाल मेहरा, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज मोहाली चंडीगढ़ से, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू किट्टू, नांदुरा से संतोष वसानी, उषा वसानी, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक, विशाल सोनाली, समर्पण और भक्ति इसी संदेश में नाम शामिल है। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक, श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक, अनुश्री, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलबेन और राजेंद्र जी शाह, चोड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता और प्रतीक हिवराले,

बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अर्जा, नवान और इनके परिवारीजन। पलरी छत्तीसगढ़ से नीतेश कुमार देवांकन, दुर्गा प्रसाद देवांकन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांकन। बहुत सारे श्रोताओं ने पत्र के माध्यम से भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है, उन पत्रों को आप तक पहुंचाएंगे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत हम आपको पहुंचा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में, प्रेम रोग फिल्म से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में प्रेम रोग फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संतोष आनंद की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदाब। बरेवा छत्तीसगढ़ से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। वर्निंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशोरी धान खुराना। बालोद छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, जयतुषार तामुरिया,

और मास्टर अल कबीर। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल। बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े, आकांक्षा और आकाश। फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु। गांव उस पार से मथुरा के श्रोता यादराम, वीरेंद्र कुमार, भोली, मनीष, कान्हा, कोमल, लड्डू, वैष्णवी, प्रीति, पिंकी, ओमवती, मनोज कुमार। करजत से मोहम्मद अहमद, फूल वाले, नूर आयशा अहमद, दुखना सदफ, इमरान, अमना असमा, आशु अहमद। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कंगवासरा, सचिन कंगवासरा, सतीश कंगवासरा, योगेश युद्धर, हनुमान सहारण। गांव बड़वाला हनुमंता फाजिल का पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यासिका, मां विद्या, सारा मायल और इनका परिवारीजन। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंगों।

बठिंडा रोड मंडी डब वाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी और तानिया नारंग का संदेश। दुर्गा कॉलोनी हाजी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष डब्बू बब्बू। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और जैनविका। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष और नंदनी। दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखिलाल वर्मा। मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका श्रीगंगानगर राजस्थान से। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विवेक विशाल, सोनू मोनू रानू और यीशु बाबा। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। हरजिंदर सिंह चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। सतीश अनेजा, विमला नेजा, चंडीगढ़ से। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता निकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और इनके ढेर सारे साथीगण। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव और एसके पप्पी। पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और साइना सोनवने। दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, रजत, रजमत, मुरली और नीला, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर हरिद्वार से। सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, मिंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा। कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक, सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, किरण और इनके ढेर सारे साथी। वाराणसी से नफीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीस अजीज और मोहम्मद रजा। श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी जनांगल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी सौरभ, साइना और निवान शर्मा। खंडवा से मध्य प्रदेश के श्रोता दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, राधिका और दीपिका सैनी। और सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, हीरो फिल्म से।

लता मंगेशकर की आवाज में हीरो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। राजकोट गुजरात से रश्मि शर्मा का संदेश मिला है। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोड़की, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। हिसार हरियाणा से राजकुमार टूटी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम और नजमुल होला गुमला झारखंड से। धनहरी तेरीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान। मुल्तानी ढांडा से पहाड़गंज के श्रोता अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। पत्र के माध्यम से संदेश भेजा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। आकाशवाणी श्रोता संघ जलगांव की ये श्रोता हैं संतोष कुमार सोना।

जवाहरनगर, तुर्क से आरसी कामड़े, करुणा मीणा, अश्विनी और विपुल कामड़े, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सुवरज और पीआर जैन, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी जय मित्री, श्रोतागण कृपया ध्यान दें, एक बार संदेश भेजने के बाद कोई भी संदेश मान्य नहीं होगा, इसलिए एक ही बार संदेश भेजें। शाहू नगर, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन और रोशनी, इनके साथ हैं प्रियांशी मनवर। तेलंगाना, निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ से, बुलडाढ़ा व शिंगड़ी महाराष्ट्र से अमोन मालकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ और बेगम अफजल। मुरादाबाद, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर। वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि और मायरा सुरोशी। कृष्ण कुमार डाभी, भूपत कुमार डाभी, राधा डाभी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाभी। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू।

अकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम और संजीव डाबिराव। बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप और एकम, दमन, अभिजीत। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत। भूत बंगला फिल्म से ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गीतकार हैं हजरत जयपुरी, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज में बुलबुल भूत बंगला फिल्म का किताब सुन रही थी। बहुत सारे संदेश अभी भी हैं शेष, जिन्हें हम अभी प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए हैं। कोशिश करते हैं कुछ और श्रोता शामिल हो सकेंगे। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता फलक, मोहम्मद नसीब, लुबना और यश मंसूरी का संदेश में मिला है। लखनऊन मध्य प्रदेश से रिमझिम ये संदेश में दोबारा मिल रहा है।

उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मोड़त, चेतन नाहटा। और इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मुझे यानी अरविंद को दीजिए इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति। आप सभी को

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्र एवं व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का साप्ताहिक कार्यक्रम नवरंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीति तिवारी के गाए कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे प्रीति तिवारी और प्रीति उत्तम की गाई कुछ गजलें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक सूचना सुनिए। प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देशभर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 रुपये सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना ई-केवाईसी और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी, इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से केवीके कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के अनुसंधान केंद्र, कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अतुल देसाई का ख्याल गायन, राग है जय जयवंती, तबले पर संगति लतीफ अहमद की है।

अभी आप सुन रहे थे अतुल देसाई का ख्याल गायन राग था जय जयवंती, तबले पर संगति लतीफ अहमद की थी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में

पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक

फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म।